0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: कभी आपकी जिंदगी में ऐसी दुविधा हुई है दैट यू आर डेटिंग समबडी और उसे डेट करते करते उस रिलेशनशिप के आउटसाइड आपको किसी और से मोहब्बत हो जाती है, फिर क्या होगा? सो मेरी बेस्टी के साथ रियल लाइफ में लेजिट ये हो रहा है. शी इज बीन इन अ रिलेशनशिप फॉर अ फेयरली लॉन्ग टाइम नाउ, मतलब इन लोग को आई थिंक 1 साल हो गया है और अब उसे नया नया समझ में आ रहा है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के फर्स्ट कजन से कुछ ज्यादा ही लगाव होने लगा है. शी इज लाइक, यार हम बहुत ही थिक हैं और थिक होते होते कब मुझे उससे प्यार हो गया मुझे समझ नहीं आया, पर अब मैं क्या करूं. आई वाज लाइक आई डोंट नो, ये दोनों भाई हैं, तू एक पर्टिकुलर भाई की 1 साल से गर्लफ्रेंड है और अब तू दूसरे भाई की अगले 1 साल तक गर्लफ्रेंड बनना चाहती है. आई डोंट नो हाउ यू गोना फिगर दैट आउट, बट अगर आपके पास मेरी बेस्टी के लिए कोई सजेशन है, फील फ्री टू हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड टेल मी ऑल अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RochiE. भगवान बचाए मेरी बेस्टी को. ऑन दैट नोट, कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.
2: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी.

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2। अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
1: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, EKG एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स।
0: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस। फॉर एनरोलमेंट कॉल 9082220002 और विजिट aimseducation.edu।
2: नो
0: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आप ना मतलब बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और नॉटी टेक्स्ट लिखते हो जो पब्लिश भी हो जाते हैं और आपके पास एक ब्लॉग भी है उसके बारे में, लेकिन आपके बॉयफ्रेंड को इसके बारे में कोई इल्म है नहीं, बेचारे को कोई आइडिया नहीं है, ऐसे गंदे काम.
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: गंदे तो नहीं है, बट लाइक आई एम सेइंग दैट योर बॉयफ्रेंड शुड नो द होल ट्रूथ अबाउट यू, राइट? बट अगर आप उसके साथ शेयर नहीं करना चाहते कि आप कैसे इंसान हो, यू कैन डू इट हियर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. टाइम फॉर द कन्फेशन बॉक्स, एज यू जस्ट हर्ड. नाम के स्पेलिंग ROCHIE. तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर अपना नंबर और कन्फेशन भेज दो, एंड आई कॉल यू लाइक आई कॉल माई मिस्ट्री कॉलर. हाई नॉटी गर्ल.
3: हाई रोशी,
1: हाउ आर यू?
3: Very good. How are you?
1: Actually, आप गुड से भी बेटर हो, क्योंकि आपने मुझे जब अपना कन्फेशन भेजा ना, तो आई वॉज लाइक कि ये क्या इंसान है, इसका दिमाग कितना खुराफाती है, लाइक इट्स अ लेजिटिमेटली डर्टी माइंड यू गॉट.
3: अब परेशानी है रोशी, परेशानी का सलूशन तो निकालना पड़ेगा ना.
1: और ऐसे देखो कैसे, तो एक्चुअली ओके ठीक है, तो हुआ क्या, लाइक स्टार्ट से बताइए मोहतरमा, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट.
3: स्टार्ट वहां से हुआ कि एक गलत स्वाइप हुआ. हाँ. फिर मैंने सोचा चांस दे देते हैं.
1: हाँ.
3: But clearly not all men deserve a second chance.
1: हाँ, correct.
3: There were too many outbursts, हर बार का निखरे. हाँ. बाहर जाके सीन क्रिएट करना. तो अब विदाउट क्रिएटिंग टू मच ऑफ हैसल, इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ से कैसे हटाओ. तो मैंने सोचा एक आइडिया कि मैं अपने इस डेट को एक अपनी US की रिटर्न फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करूंगी.
1: अच्छा.
3: And this was between her and me. So we decided, she sent him a text. She started flirting with him. He was a little interested. So he flirted back, which she of course told me. And after that, she very clearly asked him if he's seeing someone or not. Obviously, we were seeing each other. He would not tell me that he's flirting with someone else. So she gave him an ultimatum that it's either me or this girl that you're dating. He decided to break up with me. Meri friend chali gayi ek hafte baad US aur problem life se bahar.
1: किस तरह के इंसान हो आप कि आपका दिमाग इतना स्मार्ट कैसे चलता है कि लाठी भी टूट जाए और सांप भी ना, व्हाट एम आई सेइंग, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना?
3: लाठी भी ना टूटे.
1: बेब यू आर सो क्लेवर. आपको तो मतलब मैं रोशिफिकेशन के साथ साथ अपना दिल भी देना चाहती हूँ. विल यू बी एक्सेप्टिंग बोथ ऑफ देम?
3: यस एब्सोल्युटली.
1: ले ले बेबी.
4: यू हैव बीन रोशिफाइड.
1: यू आर अमेजिंग. I mean, I don't know, I'm sure you hear that a lot, but you are amazing. आपसे बात करके ना इतना refreshing feel हो रहा है, जैसे मैंने अभी बस नींबू पानी पी लिया हो.
3: इस गर्मी में नींबू पानी जरूरी है.
1: Actually, इस गर्मी में नींबू पानी जरूरी है. And like to let all of your secrets out so that you feel better about life. तो ऐसे ही मेरी मिस्ट्री कॉलर की तरह अगर आपकी भी जिंदगी में कोई कन्फेशन है, feel free to hit me up Insta पर या FB पर. मेरा नाम छे मिर्ची रोशी. काम छे आपसे प्यार करना. नाम की स्पेलिंग ROCHIE. So do whatever you have to do. लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई।
1: हाँ हाँ सुना।
0: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब?
0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तो चले,
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: Visit Virani Jewelers on Oak Tree Road. 0% making charges on 22 carat and diamond jewelry and 100% value on your gold trade-in. Visit ViraniJewelers.com.
0: Celebrate freedom with Mirchi. July 4th Independence Day se August 15th Independence Day tak. Sirf freedom hi freedom.
3: Only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot. It's hot.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan Italia.
6: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra sahab, so how was Italy?
7: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
6: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party? Hamare ghar pe.
8: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन। Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: Gulabi saadi ani lali lal la. Disate me bhari raja photo maza ka.
13: T-Series present Dhamaal 4.
14: Gulabi bina chatni kaise bani.
13: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
15: Tera kya hoga, Kalia?
16: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
15: Ab, mirchi kha.
17: Radio Mirchi, it's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Mirchi, fresh maal.
2: जब हर बीट में हो तड़का, तब बनती है चटनी.

0: आवाज दी है नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने, म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नीलकमल सिंह ने, और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
3: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: पुराने जमाने में वो जो एक्साइटिंग मिस्टीरियस और बहुत ही टर्निंग ऑन स्पाइस होती थी, द गर्ल स्पाइस, मुझे लगता मुझे उनमें से एक होना चाहिए था बिकॉज आई ऑनेस्टली लाइक लव डिगिंग इन टू पीपल्स लाइव्स एंड फाइंडिंग आउट थिंग्स अबाउट देम जो वो किसी और के साथ शेयर ना करें. एंड ऑल ऑफ लास्ट वीक मैंने डिसाइड किया कि मैंने अपने सारे गाय फ्रेंड्स को फोन करूंगी एंड आई एम गोना आस्क देम कि ऐसी कौन सी चीजें हैं अबाउट वीमेन दैट दे लव लेकिन वो कहने से डरते हैं बिकॉज यू नो दे विल बी जज्ड एंड स्टफ. और मेरा जो सबसे ज्यादा प्ले बॉय दोस्त है अंकित, ही वॉज लाइक यार जब भी कोई लड़की मेरे कंधे पर अपना सिर रखती है ना मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि यार शी ट्रस्ट मी सो मच और मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ. एंड आई नो दैट इट्स अ वेरी सीरियस जेंडर बायस कि सिर्फ आदमी लड़कियों का ध्यान रख सकते हैं, बट फॉर मी दैट इज समथिंग दैट आई सीक्रेटली अडोर. मैं इसके बारे में कुछ कहता नहीं हूँ बट जब भी कोई लड़की ऐसे करती है ना आई गेट इन द मूड फॉर लव एंड आई वॉज लाइक सीरियसली लाइक ऑफ ऑल द थिंग्स दिस इज वॉट टर्न्स यू ऑन. He was like, इससे ज़्यादा कोई और चीज़ मुझे romantic नहीं लगती है. When a girl puts her shoulder on, not her shoulder, puts her head on my shoulder. So this is one secret thing which I figure all men like, लेकिन वो कहना नहीं चाहते because it comes across as supremely masculine in nature. So if you're a girl और आप चाहते हो that the crush that you have in life absolutely falls in love with you, उसके कंधे पर किसी भी बहाने से सर रख लेना and once that relationship goes somewhere for you, मुझे thank you बोलना मत भूलना क्योंकि thank you is a free of cost thing, you know. And to do that, you can hit me up Insta par ya FB par. Mera naam hai Mirchi Roshi. Kaam hai aapse pyar karna, which is why I'm called your broshi. So do whatever you need to do. Lekin kahin mat jana, kyunki wapas to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: बर्गर कौन खाता है? Have something healthy, salad वाला order कर. Burger is no thing to eat for lunch. In fact, burger तो सिर्फ cheat meals में खाना चाहिए. And I'm like, अच्छा, तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या खाना चाहिए, अपने शरीर में क्या डालना चाहिए. What I should and should not be eating, thank you very much, but no thanks. मेरी एक recentish date थी जिसमें बंदा मुझसे पहली बार मिला है और I wanted to order a burger, obvio. And he's turning around and saying ki, bhai kuch healthy kha le, nutritious kha le, tu meri mamma hai ya meri date hai? And that's when I realized, moral of the story, jab aap kisi bhi date par jao, even if it's your 500th date, maybe the best thing to do is not tell the samne wala person what to wear, what to eat. Agar main tumhe nahi bata rahi hu ki kya pehenna hai, kya khana hai, kise vote karna hai, to tum apne opinions apne paas rakho. That's the sacred rule of making relationships work. Agar aapko bhi aisa hi lagta hai aur meri tarah aap bhi aise nikamme bewakoof dates par jate rehte ho, why don't you share notes with me? Aur wo karne ke liye aap mujhe dhoond sakte ho insta par ya fb par. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ki spelling hai rochie. So go ahead and find me on the gram ya facebook. But whatever you do, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये. सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन.

0: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
1: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, EKG एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स।
0: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस। फॉर एनरोलमेंट कॉल 9082220002 or visit aimseducation.edu.
2: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
4: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
3: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई,
1: हाँ हाँ सुना,
0: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब
0: विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तो चले,
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: विजिट विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन योर गोल्ड ट्रेड इन। विजिट viraniijewelers.com।
0: सेलिब्रेट फ्रीडम विद मिर्ची, जुलाई 4th इंडिपेंडेंस डे से अगस्त 15th इंडिपेंडेंस डे तक, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम।
3: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: Tera kya hoga, Kalya?
6: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
5: Ab mirchi kha.
7: Radio Mirchi, it's hot.

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

मुझ जैसा स्मार्ट इंटेलिजेंट क्रेजी ब्रेन कैसे स्विच ऑफ हो सकता है व्हेन आई एम इन द कंपनी ऑफ द मैन दैट आई लव, मुझे आज तक समझ में नहीं आता था. लेकिन अब मैं ना सडनली बहुत ही खुश फील कर रही हूँ क्योंकि देयर इज अ न्यू रिसर्च जिसके हिसाब से ये पता चला है कि ये सच है. वीमेन्स ब्रेन एक्चुअली स्विच ऑफ कर जाता है व्हेन दे आर विद द मैन दैट दे लव. और ये इसलिए होता है क्योंकि जहां पर वीमेन फील लव्ड सेफ एंड सिक्योर वहां उन्हें लगता है कि हाँ हम अपना पूरा 100% दिल इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें ब्रेन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस पर्सन विल नॉट हर्ट अस इन एनी वे. और इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट एक लड़की आपको नहीं दे सकती है व्हेन शी इज अराउंड यू और उसका दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा है. फॉर ऑल दोज गाइज इन माई लाइफ जिनके आस पास रहकर भी मैं ऐसे इंटेलेक्चुअल बिहेव करती हूँ, दिस इज टू टेल यू दैट यू डोंट मेक मी फील सेफ. ओके, नाउ चेंज योर गेम एंड वाइल यू आर listening to this and you feel ki yaar zindagi mein ek banda to hai jiske sath I feel like this but I just can't tell him that, why don't you tell me that and maybe I can pass on your love to him. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ki spelling hai Rochie. Aap mujhe dhoond sakte ho on the gram and on Facebook and while you do that kahin mat jana kyunki wapas to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैन हैटन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

न्यूज़ में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आदमियों को ट्रेनिंग की जरूरत है. आई नो दिस इज अ रियली कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग टू से, बट मुझे ऐसा लगता है और मेरी बेस्टीज अग्री करती हैं कि, और मैंने अपने भाई के साथ भी ये सीखा है, ठीक है. मेरा भाई पैदाइशी काफ़ी डफर इंसान है. अगर वो किसी को प्यार करता है, देन ही प्रिज्यूम्स कि सामने वाला इंसान ऐसे मैजिकली ना समझ जाएगा कि मेरा भाई आपको प्यार करता है, बिकॉज ही विल जस्ट जनरली केयर फॉर यू इन लाइफ. बट बंदियों को बहुत सॉलिड क्यूज एंड क्लूज चाहिए होते हैं टू अंडरस्टैंड दैट दे आर लव, करेक्ट. सो अब क्योंकि ये बैटल ऑफ द सेक्सेस तो बचपन से चलते आ रहा है, आई हैव रियलाइज कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हो एंड यू वॉन्ट योर मैन टू डू द थिंग्स जो आपका ड्रीम गाय करता है, उसके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी. थोड़ा सा झगड़ना, रूठना, मनाना, लेकिन अगर आप में इस तरह की पेशेंस ही पेशेंस है भाई कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, एक साल तो मैं बैठ के यहाँ पे मतलब आटा ही गूंद रही हूँ विदाउट द प्रोसेस ऑफ टर्निंग इट टू पराठास, रोना नहीं सिस्टर, प्लीज डोंट क्राई, दिस इज द काइंड ऑफ वर्क यू हैव टू डू, ओके. Men have to be trained. आपका क्या कहना है इसके बारे में? Since I have stirred this controversy, you can hit me up Insta पर या FB पर. You can give me bouquets and brickbats, whatever you do. मेरा नाम है

लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आप ना मतलब बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और नॉटी टेक्स्ट लिखते हो जो पब्लिश भी हो जाते हैं और आपके पास एक ब्लॉग भी है उसके बारे में, लेकिन आपके बॉयफ्रेंड को इसके बारे में कोई इल्म है नहीं, बेचारे को कोई आइडिया नहीं है ऐसे गंदे काम.
0: द सीक्रेट बॉक्स.
1: गंदे तो नहीं है बट लाइक आई एम सेइंग दैट योर बॉयफ्रेंड शुड नो द होल ट्रूथ अबाउट यू, राइट? बट अगर आप उसके साथ शेयर नहीं करना चाहते कि आप कैसे इंसान हो, यू कैन डू इट हियर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. टाइम फॉर द कन्फेशन बॉक्स. एज यू जस्ट हर्ड, नाम की स्पेलिंग ROCHIE. तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर अपना नंबर और कन्फेशन भेज दो. आई कॉल यू लाइक आई कॉल माई मिस्ट्री कॉलर. हाय नॉटी गर्ल.
2: हाय रोशी,
1: हाउ आर यू?
2: Very good. How are you?
1: Actually, आप गुड से भी बेटर हो क्योंकि आपने मुझे जब अपना कन्फेशन भेजा ना तो आई वॉज लाइक कि ये क्या इंसान है, इसका दिमाग कितना खुराफाती है. लाइक इट्स अ लेजिटिमेटली डर्टी माइंड यू गॉट.
2: अब परेशानी है रोशी, परेशानी का सलूशन तो निकालना पड़ेगा ना.
1: और ऐसे देखो कैसे. तो एक्चुअली ओके ठीक है, तो हुआ क्या? लाइक स्टार्ट से बताइए मोहतरमा, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट.
2: स्टार्ट वहां से हुआ कि एक गलत स्वाइप हुआ. हाँ. फिर मैंने सोचा चांस दे देते हैं. बट क्लियरली नॉट ऑल मैन डिजर्व अ सेकंड चांस.
1: करेक्ट.
2: देयर वर टू मेनी आउटबर्स्ट, हर बार का निखरे. हाँ. बाहर जाके सीन क्रिएट करना. तो अब विदाउट क्रिएटिंग टू मच ऑफ हैसल इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ. हाँ.

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई,
1: हाँ हाँ सुना,
0: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब?
0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तो चले,
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: Visit Virani Jewelers on Oak Tree Road. 0% making charges on 22 carat and diamond jewelry and 100% value on your gold trade-in. Visit ViraniJewelers.com.
0: Celebrate freedom with Mirchi. July 4th Independence Day se August 15th Independence Day tak. Sirf freedom hi freedom.
3: Only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot. It's hot.
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स जो होते हैं ना, जिन्हें बात करके और डिस्कस करके हमें बड़े मजे आते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि हम भी उत्तेजित हो जाते हैं और सामने वाला भी उत्तेजित हो जाता है. ऐसे कॉन्वर्सेशंस को ना, दोज आर बेस्ट लेफ्ट टू हैव विद योर फ्रेंड्स, जो बहुत जमाने से आपके दोस्त हैं या आपके पेरेंट्स हैं, आपके कॉलीग्स ऑल्सो. लेकिन पहली, दूसरी, तीसरी डेट पर भी, आई वुड से, अगर आप ऐसे पॉलिटिकल या रिलीजियस आइडियोलॉजीज डिस्कस करने लगते हो ना, तो इट क्रिएट्स सच अ टेंस्ड एनवायरनमेंट कि आप रोमांस के लिए जाते हो, लेकिन बिल्कुल ही उसका ऑपोजिट, आप एंटागोनाइज्ड और बहुत ही लाइक यू नो पैशनेट हो जाते हो, इन नॉट इन अ गुड वे. सो मैंने अपनी डेटिंग लाइफ में एक चीज़ सीखी है कि जब मैं बाहर जा रही हूँ टू मीट समबडी फॉर द फर्स्ट या सेकंड या थर्ड टाइम, ऐसे जो मतलब बहुत प्रोवोकेटिव टॉपिक्स होते हैं ना, मैं उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ. नॉट बिकॉज आई वॉन्ट द सामने वाला टू थिंक कि भाई मेरे पास कोई ओपिनियंस ही नहीं है या मेरे पास एक्सट्रीम ओपिनियंस की कैपेसिटी नहीं है, बट बिकॉज आई एक्चुअली वॉन्ट टू गेट टू नो द अदर पर्सन. और एक बार आप सामने वाले को जान जाओ, देन वंस यू आर इन अ कंफर्टेबल एंड सेफ एनवायरमेंट टुगेदर एक दूसरे के साथ,

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Surin ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in...
3: हर फ्राइडे बॉलीवुड हमें बताता है कि उसने इस हफ्ते क्या बनाया, लेकिन हर मंडे ऑडियंस बॉलीवुड को बता देती है कि उसने क्या रिजेक्ट किया। और शायद इसलिए हिंदी सिनेमा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर खड़ा है। आज सिर्फ बड़े स्टार्स काफी नहीं है, सिर्फ बड़े बजट्स काफी नहीं है, सिर्फ नॉस्टैल्जिया भी काफी नहीं है। अच्छी फिल्म हो तो लोग उसे ढूंढ ही लेते हैं, लाइक मैं वापस आऊंगा। बुरा रीमेक हो तो लोग उसे छोड़ भी देते हैं। और जो चीज कभी सिर्फ पोस्टर्स और प्रमोशंस डिसाइड करते थे, आज वो प्लेलिस्ट, रिव्यूज और वर्ड ऑफ माउथ डिसाइड करते हैं। यानी बॉलीवुड बदल रहा है, लेकिन उसे बदल कोई और नहीं रहा, आप बदल रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू ड्रॉप ऑफ द मिर्ची टॉप 20। मैं हूं आपका ट्रैवल बडी ऑन दिस राइड सुरेन सुंदरम। एंड वो मंजर आ गया है जहां एक गाने को 13 महीनों बाद शायद हम अलविदा कहने जा रहे हैं। हर जेनरेशन अपनी मोहब्बत को एक गाने में हमेशा के लिए कैद कर लेती है। शायद इस जेनरेशन के लिए वो है सैयारा। नॉट जस्ट अनदर हिट सॉन्ग, ये वो गाना था जिसमें लाखों लोगों ने अपना प्यार, अपना इंतजार और अपना टूटना छुपा दिया। वक्त बदलेगा, महीने बदलेंगे, पर सालों बाद कहीं दिल के किसी कोने में एक सैयारा छुपा होगा। नंबर 20।

कभी कभी बॉक्स ऑफिस एक बहुत खूबसूरत बात सिखा देता है। मैं वापस आऊंगा उसका जीता जागता सबूत है। फिल्म ने शोर मचाकर नहीं, लोगों का दिल जीतकर अपनी जगह बनाई। और शायद हिंदी सिनेमा भी धीरे धीरे कुछ और सीख रहा है। बहुत सालों तक बॉलीवुड ने हमें एक ही तरह की हीरोइन दिखाई, एक तरह का चेहरा, एक तरह की बॉडी, जिसे प्यार सिर्फ कुछ लोगों को ही सूट करता हो ऑन द स्क्रीन। फिर आई अंजलि आनंद, टीवी की सबसे ब्रिलियंट परफॉर्मर्स में से एक, और फिर उन्हें मिली एक फिल्म।

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, डायरेक्टेड बाय करण जौहर हिमसेल्फ। अब उसमें अंजलि का रोल छोटा था, लेकिन वो रोल बन गया बेहद यादगार। एंड अब धमाल 4 में वो सिर्फ फ्रेम का हिस्सा नहीं है, वो लव स्टोरी का हिस्सा है। और मुझे लगता है ये कास्टिंग सिर्फ एक कास्टिंग नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि हीरोइन होने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट्स नहीं, परफेक्ट ऑनेस्टी चाहिए होती है। और अंजलि में वो ऑनेस्टी साफ नजर आती है। सच कहूं, अगर हिंदी सिनेमा वाकई बदल रहा है तो उसकी पहचान उन चेहरों से होगी जिन्हें देखकर ज्यादा लोग कहेंगे ये तो हम जैसे लगते हैं, ये तो हम ही हैं। नंबर 18 पर इस हफ्ते एक नई एंट्री हो रही है, मराठी सेंसेशन संजू राठौड़ की आवाज में रितेश देशमुख और अंजलि आनंद पर पिक्चराइज। दिस वन इज अ रोमांटिक सॉन्ग एंड इस गाने का नाम है साड़ी, फ्रॉम धमाल 4। नंबर 18।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 17।

व्याह करवा दो जी, इस हफ्ते नंबर 17 पर है, लेकिन मेरी नजर गाने पर नहीं, हमेशा उसके टाइटल पर ही जाती है। है जवानी तो इश्क होना है, और मुझे सच में लगता है कि बॉलीवुड को फिर से लंबे टाइटल्स याद आने लगे हैं। देखो, हम 90s वाले लोग एक अजीब सी लग्जरी के साथ बड़े हुए थे। उस जमाने में फिल्म के टाइटल सिर्फ नाम नहीं होते थे, पूरे के पूरे इमोशंस होते थे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हमारा दिल आपके पास है, कभी खुशी कभी गम, एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट टू ऑफ माय फेवरेट्स, बोथ ऑफ देम वर सलमान खान फिल्म्स। नंबर 1 पर

0: और ऐसा लगता था जैसे पोस्टर देखने से पहले ही फिल्म आपसे बात कर रही हो। फिर सिंप्लिसिटी ट्रेंड बन गई। अल्फा, एनिमल, सिकंदर, धुरंधर, एक शब्द, एक पंच। सर्च करने में वैसे आसान भी होता है, लेकिन याद रहने के लिए सिर्फ छोटा होना काफी नहीं होता। शायद इसलिए 25-30 साल बाद भी हम उन पुराने टाइटल्स को आज भी पूरा बोलते हैं। एक भी लफ्ज नहीं छोड़ते, क्योंकि वो टाइटल्स नहीं थे, वो बॉलीवुड की वो कैबुलरी बन गए थे। नंबर 16 पर इस हफ्ते वी हैव गॉट द टू वर्ड्स कॉल्ड भूत बंगला, जिसका गाना तू ही दिसदा इज ट्रैकिंग वेल विद द ऑडियंस। लेकिन लंबी टाइटल वाली फिल्मों को याद करते हुए, हियर इज अ मॉडर्न डे फिल्म विद अ लॉन्गेस्ट टाइटल, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। उसका शायद सबसे पॉपुलर एंड येट सबसे खूबसूरत गाना मोहित चौहान इन सुपर फॉर्म, ये है पीलू। प्रीतम दा का म्यूजिक, इरशाद भाई का लिखा, बनाते इसको इस हफ्ते का रिवाइंड।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot.
1: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे.
2: अच्छा है.
1: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई.
2: हाँ हाँ सुना.
1: जून भी आ गया. जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया.
2: मतलब?
1: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए.
2: तो चले.
1: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से.
2: और कुछ?
1: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में.
2: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
1: जनवरी में ही बताया था.
3: Visit Virani Jewelers on Oak Tree Road. 0% making charges on 22 carat and diamond jewelry and 100% value on your gold trade-in. Visit ViraniJewelers.com.
1: Celebrate freedom with Mirchi. July 4th Independence Day se August 15th Independence Day tak. Sirf freedom hi freedom.
0: Only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot. It's hot.
4: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा. Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
0: Only on Mirchi. It's hot.
5: Number 8.

I've never cared about box office numbers. मुझे सच में कभी फर्क नहीं पड़ा. अगर पड़ा होता तो पान सिंह तोमर, कहानी, तनु वेज मनु और क्वीन जैसी फिल्में मैं थिएटर्स देखने कभी नहीं जाता. बट 2026 में नंबर्स हैव स्टार्टेड मीनिंग समथिंग, राइट? कॉकटेल 2 ने अभी हाल फिलहाल ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. और एक वक्त था जब ये बड़ी न्यूज हो सकती थी, आज ये बस एक नंबर लगता है. और शायद बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, हमने फिल्मों को देखना कम, उन्हें कंपेयर करना ज्यादा शुरू कर दिया है. एक तरफ धुरंधर

0: गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर इज अ नंबर 6, एक ऐसी फिल्म जो 3,000 करोड़ के फिगर्स टच कर रही है। एंड देन दूसरी तरफ वो फिल्में जो शायद ओपनिंग वीकेंड की हेडलाइंस ना जीते लेकिन वक्त जरूर जीत लेती हैं। सबसे बड़ा नुकसान कलेक्शंस का नहीं हुआ, उस बीच वाली फिल्म का हुआ। वो फिल्म जो ना फ्रेंचाइज थी, ना सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा थी, ना उसके पास 500 करोड़ का बजट था, बस एक ईमानदार कहानी होती थी उन फिल्मों में और उसे कहने का हौसला होता था। सच कहूं मुझे हिंदी सिनेमा का वही चेहरा सबसे ज्यादा याद आता है, क्योंकि उसी ने हमें कुछ ऐसी फिल्में दी हैं जिन्हें हम बॉक्स ऑफिस से नहीं अपने दिल से याद रखते हैं। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग एक ऐसी फिल्म से है, दम लगा के हायशा अपॉन की आवाज में। दिस इज मोमो के धागे।
1: Special request song. Yeah.

0: सिर्फ चार ही हफ्तों में ऊंचा लंबा कद हैज क्लाइम्ड नंबर टू। पुराना हुक, नई पैकेजिंग एंड मुझे आनंद राज आनंद साहब के लिए इतनी खुशी हो रही है। उन्होंने कुछ बड़ी फिल्में साइन की हैं एंड द मैन डिजर्व्स इट ऑल। और एक बार फिर बॉलीवुड ने साबित कर दिया है कि सीक्वल सिर्फ फिल्मों के नहीं होते, गाने भी दूसरी जिंदगी जी लेते हैं। लेकिन एक सीक्वल ऐसा भी आ रहा है जहां एक्साइटमेंट फिल्म से ज्यादा उसके म्यूजिक को लेकर है, आवारापन 2। और शायद उसकी वजह यह है कि आवारापन को कल्ट उसकी कहानी ने नहीं, उसके म्यूजिक ने बनाया था। दो गाने ऐसे आए थे जो कभी किसी की प्लेलिस्ट से बाहर ही नहीं निकल पाए।
1: तो फिर मुझको सताओ।
0: And then the one that became a timeless heartbreak classic.

हर सीक्वल पहली फिल्म से बड़ा बनना चाहती है, लेकिन आवारापन 2 को सिर्फ एक चीज मैच करनी है, अपनी वो साउंडट्रैक। और यकीन मानिए, वो एवरेस्ट चढ़ने जैसा चैलेंज है, क्योंकि कुछ एल्बम्स सिर्फ हिट नहीं होती, वो एक जेनरेशन की यादों में परमानेंटली डाउनलोड हो जाती हैं। अगर आवारापन 2 ने वही एहसास फिर से जिंदा कर दिया, तो मिलेनियल्स सिर्फ टिकट्स नहीं खरीदेंगे, वो अपनी यादें दोबारा जीने जाएंगे। लेकिन फिलहाल पिछले 20 हफ्तों से यादें नहीं, हिस्ट्री लिख रहा है एक और साउंडट्रैक। 20 हफ्ते ऑफ बीइंग द अनडिस्प्यूटेड नंबर वन, रील से लेकर शादियों तक इंडिया का नंबर वन गाना। जैस्मिन सैंडलर्स, मधुमंती बागची शरारत करने वाले हैं फिर से। नंबर वन।

0: इतने गाने, लेकिन इनमें से कितने अगले हफ्ते तक रह पाएंगे और कितने सालों बाद भी साथ रह जाएंगे, इस सफर का हिसाब किताब हम ही रखते हैं। लेकिन इस बार का हिसाब होता है खत्म। शरारत कंटिन्यूज टू बी द नंबर वन सॉन्ग। मिर्ची टॉप 20 विल बी बैक अगेन विद अनदर एपिसोड। तो अगली बार तक सिरे ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन आपको पता है दिलीप कुमार साहब ये ट्रेजेडी रोल्स करते करते थक गए थे क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ पे इसका असर पड़ने लग गया था। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: हर कहानी में समझिए ना कि रंज और तकलीफ, और रोज सुबह उठिए तो नहा धो के कपड़े बदल के आप स्टूडियो में पहुंची तो कोई रोने मरने का सीन या कुछ तकलीफ का, इस किस्म की चीज जो है वो इंसान के जहनी नशोनुमा पर वो असरअंदाज होती है, और छोटी उम्र में ये चीज बहुत ही असरअंदाज होती है तबीयत के ऊपर। और इसके लिए मैंने ड्रामा के कोच थे जिनसे बात की और जिनसे मशवरा किया, कुछ साइकाइट्रिस्ट थे उनसे मशवरा किया, और उन्होंने यही कहा कि इस चीज़ से इसके छुटकारा पाने के लिए आप ज़रूर कॉमेडी ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कॉमेडी करने की, एक्शन का फिल्म करने की, या किरदार को अपने जो है एक यानी शदीद किस्म की तब्दीली अपने किरदार में लाइए, काम करने का जहाँ तक ताल्लुक है उससे वो फ़ायदा होगा।
0: बस इसके बाद इन्होंने कॉमेडी पटाखा फायर क्रैकर टाइप के रोल्स करने शुरू कर दिए, और इसी तरह का एक पटाखा गाना इनका सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमारा

0: अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ पुरानी जीन्स पर ओनली ऑन मिर्ची
1: हेलो
2: हेलो
1: हाँ बोलो कौन
2: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ बोल कौन रहा है
2: बोल कौन रहे हो कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
1: बोल कौन रहे हो
2: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ बोला था
2: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
1: पूछ के घुसे थे क्या अंदर
2: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
1: हाँ बोलो
2: यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
1: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
2: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
2: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ ओए यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर
1: कब आया था कब घुसा अंदर
2: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
1: तो कहाँ करा तो नहीं हो गया
2: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
1: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
2: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
1: मेरी सीवर में घुसा है किसी और के सीवर में घुस गया
2: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
1: सीवर में मरा रहा है तू
2: गाली तो मत दो
1: हेलो
2: हेलो
1: फिर फोन कर दिया तूने
2: अच्छा सीवर साफ हो जाएगा काम करो एक चीज बोलो
1: क्या बोलो
2: कुकड़ुकू
3: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका पर क्या
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: मिर्ची
6: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा
7: हेलो
8: हेलो बेटा नवनीत
7: आप कौन
8: पापा कहाँ हैं
7: पापा तो बाहर हैं आप बताइए
8: बेटा ऐसा है आपके पापा और मैं हम हाँ। बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे को बता रहा था आशीष आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है उससे बात कर लेना फोन पे कभी उससे पूछ लेना मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है चलो हर बच्चा कर देता है लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा वो किसी को डांट नहीं सकता अच्छा बेटा तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी भी बात पे तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या
7: लेकिन आपको काम क्या है
8: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था
7: पापा ने कहा था
8: चुप कर पापा ने कहा था मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने उठा के पटक के रख दूंगा बता रहा हूँ मदर को
7: क्या हुआ अंकल
8: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं उनको कुछ जरूरी काम था आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में
7: अब मुझे क्यों डांट
8: चुप कर
7: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से आप मेरी बात सुनो मैं पापा से बात कर लूं
8: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं क्यों कर रहा था तूने
7: पापा को ऐसे किस बात का मुझे ये भी नहीं
8: पापा को किस बात का बुरा लगा इससे मेरे को क्या लेना देना है असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना
7: लेकिन बुरी क्या
8: अंकल ने कल देखो एक मारूंगा
7: बदतमीजी क्या करी
8: थी ये अपने पापा से पूछना ना मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं
7: कह रहा मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में
8: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं
7: ठीक है मैंने वो भी कर लिया मैं बदमाशी
8: ठीक है मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे
7: क्या बोलूं
3: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था तुम रेडियो मिर्ची पे
7: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को
8: चुप कर मारूंगा घुमा के पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
0: द कोहिनूर ऑफ इंडियन सिनेमा ओजी हैंडसम दिलीप कुमार स्पेशल विद चारू ऑन पुरानी जीन्स ओनली ऑन मिर्ची

0: हमारे यूसुफ खान साहब, पठान साहब, ये दिलीप कुमार कैसे बने? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये नाम बदलने की वजह सुनिए, उन्होंने एक इंटरव्यू में क्या शेयर की थी।
1: हकीकत बताऊँ, पिटाई के डर से मैंने ये नाम रखा। मेरे वालिद फिल्मों के सख्त मुखालिफ थे और उनके अजीज दोस्त एक लाला बशीशरनाथ थे, जिनके साहेबजादे पृथ्वीराज कपूर भी फिल्म एक्टिंग किया करते थे, और वो अक्सर बशीशरनाथ जी से बड़ी शिकायत करते थे कि तुमने ये क्या कर रखा है कि तुम्हारा इतना नौजवान और सेहतमंद लड़का देखो ये क्या काम करता है। तो मैं जब फिल्म में आया तो मुझे वो खौफ भी था कि ये जब इनको मालूम होगा तो नाराज बहुत हो गए। उस वक्त दो तीन नाम सामने रखे गए कि यूसुफ खान नाम रखा जाए या दिलीप कुमार रखा जाए या वासुदेव रखा जाए। तो मैंने अपनी ज़ाती तौर से कहा कि यूसुफ खान मत रखिए और जो आपके दिल में आए आप नाम रख दीजिए।
0: और इस तरह ये दिलीप कुमार बन गए, कभी देवदास के देवा, कभी मुगले आजम के सलीम बन गए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ पुरानी जीन्स पर ओनली ऑन मिर्ची।
1: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
2: अच्छा है।
1: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई,
2: हाँ हाँ सुना,
1: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
2: मतलब
1: विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
2: तू चले?
1: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
2: और कुछ?
1: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
2: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
1: जनवरी में ही बताया था।
0: विजिट विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड,
1: तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
2: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
1: जनवरी में ही बताया था।
0: विजिट विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड 0%।

0: दिलीप कुमार साहब ने अपने 50 साल के करियर में कुछ 50-60 फिल्में की होंगी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, बिकॉज ही बिलीव्ड इन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सुनिए इस बारे में एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था।
1: मिर्जा गालिब लिखते हैं कि अगर हूर हो या परी अगर गले का हार हो जाए, हूर हो या परी अगर गले का हार हो जाए तो जिंदगी अजीरन हो जाती है। If you have the same artist for breakfast, in the same artist for lunch, in the same artist for dinner, I mean, if that is the frequency, कि हर साल उनके 6-7-8 फिल्म हैं, हर फिल्म में वो ऐसा प्रेडिक्टेबल काम करते हैं कि आप ये महसूस करते हैं कि इस फिल्म में तो वो उस फिल्म की झलक है और इस झलक में उस फिल्म से एक कॉमन पर्सनैलिटी बन जाती है, क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी टकसाली काम होता है। लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट तवज्जो से चुनेंगे, लोगों के आगे अलग अलग चीज़ें फिल्म या किरदार पेश करते हैं, वो एक रीजन होता है लॉन्जिविटी का।
0: कम काम करो लेकिन अच्छा काम करो, और आप फिलहाल एक काम करो, मुस्कान को ले जाओ कान तक और कान रखो मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से।

0: अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ पुरानी जीन्स पर ओनली ऑन मिर्ची।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
0: द कोहिनूर ऑफ इंडियन सिनेमा, ओजी हैंडसम दिलीप कुमार स्पेशल विद चारू ऑन पुरानी जीन्स ओनली ऑन मिर्ची।

0: द मोस्ट फिनोमिनल एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा दिलीप कुमार साहब। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और उनके मोस्ट फिनोमिनल रोल्स में से एक है देवदास फिल्म का रोल। इसके बारे में एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया इस फिल्म के बारे में, सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: देवदास फिल्म थी, शरद चंद्र चटर्जी की कहानी थी। फिल्म जो होता है वो लिटरेचर पर मुबनी होता है, डिपेंड करता है। जितनी के क्लासिक की कहानी थी तकरीबन लगभग उससे मिलता जुलता उसी वजन का वो फिल्म भी बना। और मुझे लगता है आपको देवदास पसंद है ज़ाती तौर पर, और मुझसे पूछेंगे तो ज़ाती तौर पर देवदास मुझे भी पसंद है। कुछ लोगों को अब भी पूछिए तो कहते हैं कि देवदास बहुत बेहतर है। हमारे दोस्तों का एक हल्का है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं सबसे अच्छा तुम्हारा फिल्म जो था वो कोहिनूर था, और वो फिल्म कोई ट्रेजिक फिल्म देखना ही नहीं चाहते। कई लोग हैं कहते हैं कि क्या हम दिन भर के काम काज के बाद जाएं तुम्हारे रोने धोने का फिल्म देख के, हम तो पहले पूछ लेते हैं भाई कि इसमें क्या काम कर रहे हो तुम।
0: वैसे 1960 की कोहिनूर फिल्म वही फिल्म है विच वॉज सॉर्ट ऑफ अ डिपार्चर फ्रॉम हिज ट्रेजिक रोल्स। इसमें उनका रोल बहुत लाइट हार्टेड कॉमिक था। एक क्लासिकल सॉन्ग इन पर पिक्चराइज हुआ था जिसके लिए इन्होंने स्पेशली सितार प्ले करना सीखा था। सुन लेते हैं वो गाना पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।

0: आपको पता है दिलीप कुमार साहब बहुत अच्छी शायरी करते थे, बहुत अच्छा खाना बनाते थे और बहुत अच्छा गाते भी थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। पर उनको ऐसा नहीं लगता था। एक बार एक इंटरव्यू में जब उनको गाने को कहा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: गाने वाने का काम मेरा नहीं है, मैं अंग्रेजी में कहते ना जो टॉयलेट रूम सिंगिंग, वो हमारी वही है, आप उसको वहीं रखिए।
0: वेल, इसके बाद काफी रिक्वेस्ट इसरार करने के बाद आखिर उन्होंने कुछ गा के सुनाया, सुनिए।
1: दिल के लिए

0: थे उन्हें सलाम करूं।
1: अब सलामी की बात हो रही है तो ये गाना सुन लेते हैं, राम और श्याम फिल्म का, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची
1: हेलो संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं।
2: हाँ जी बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी डीडीए से बोल रहा हूँ, आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना,
2: तो हुआ कैसे है? मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
1: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना, अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको।
2: कितने का ड्राफ्ट है मेरा?
1: 7,500 रुपए का।
2: अरे भाई साहब मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे।
1: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
2: किस चीज की फीस?
1: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
2: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
1: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
2: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
1: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं सर, करोड़ों की मशीन है, आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
2: ये भी तुम्हें देख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
1: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
2: भाई, आप ही रखो यार, आप मतलब हमें तो रख लो, ये बीच में रख लो हमें तो यार।
1: अरे यार
2: हो गया, आप लूट रहे हो पब्लिक को यार।
1: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो काम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए, हेलो। हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी
2: अरे अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है जो नाम लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
1: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
2: तुमने आम इंसान तुमने बनाया ठीक है ना।
1: हाँ?
2: भैया पैसे भाड़ में गए।
1: आपकी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन में लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए संदीप।
2: हाँ बोलो बोलो
3: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटाक। लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा, only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Abhinay Samrat, the legendary Dilip Kumar special. Charu ke saath. Purani jeans par. Only on Mirchi.

0: ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या थी? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: मेरी ट्रेजेडी यही है कि अक्सर ऐसा हुआ कि जो गाने मुझको पसंद आते हैं, पिक्चर से पहले मैंने नौशाद साहब से भी कहा कि मुझको ये कैसा गाना आपने दिया है, सामान ले चले नौत का सामान ले। और नरगिस को आप अच्छे गाने देते हैं या निमी को या नादरा को अच्छे गाने देते हैं, तो कहे नहीं भाई लिखिएगा ये अच्छा। और मेरे जो पसंद के होते हैं वो फेल हो जाते हैं, और जो मुझको अपने गाने अच्छे नहीं लगते वो सब हिट हो जाते हैं। तो ये बड़ी एक अच्छी अलामत है, इट्स ए वेरी हेल्दी इंडिकेशन। इफ आई स्टार्ट ऑफ बाई नॉट लाइकिंग ए सॉन्ग, इट बिकम्स अ बिग हिट।
0: इसी बात पे इनका ये माइंड ब्लोइंग सुपर हिट गाना सुन लेते हैं, जिसके बगैर हर शादी हर बारात अधूरी है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Legend Cinema, OG Handsome, Dilip Kumar Special, with Charu, on Purani Jeans, only on Mirchi.
1: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
2: अच्छा है।
1: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई।
2: हाँ हाँ सुना।
1: जून भी आ गया। जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
2: मतलब
1: विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
2: तू चले?
1: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
2: और कुछ?
1: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
2: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
1: जनवरी में ही बताया था।
0: Visit Virani Jewelers on Oak Tree Road. 0% making charges on 22 carat and diamond jewelry and 100% value on your gold trade-in. Visit ViraniJewelers.com.
1: Celebrate freedom with Mirchi. July 4th Independence Day se August 15th Independence Day tak. Sirf freedom hi freedom.
3: Only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot. It's hot.
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल, चारू के साथ पुरानी जीन्स पर, ओनली ऑन मिर्ची।

0: अभिनय सम्राट द कोहिनूर ऑफ इंडियन सिनेमा दिलीप कुमार साहब। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और अपने करियर में जो रूल, जो फिलॉसफी वो फॉलो करते थे वो था क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। और पता नहीं कितने रोल्स उन्होंने रिजेक्ट किए, इस बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था।
1: कभी ऐसा होता है कि वो रोल नहीं पसंद आता। अब मदर इंडिया में उन्होंने मुझे रोल कहा कि ये रोल करना है। He was very determined about it, and so were his our colleagues. But I knew it that it is not a sensible thing for me to attempt, because Nargis and I were a combination at that time. I had done about 6 films with her, and some of them were good romantic films, and they were not out of the memory of people. Now, उसमें अगर मैं ऐसा picture हूँ कि मैं उसको माँ माँ करूँ या वो मुझे बेटा बेटा करके तो बात करे, आई थॉट दैट दिस विल नॉट गो वेल विद द पीपल। सो देयर आर टाइम्स व्हेन यू हैव टू एक्सरसाइज योर जजमेंट एंड इवैल्यूएट इट नो मैटर हु यू आर वर्किंग विद।
0: आप सोचिए 50 साल के करियर में इस बंदे की 50-60 फिल्में आई, इतनी पॉपुलैरिटी के बाद कितने ऑफर्स इनको आते होंगे, कितने रोल्स इन्होंने रिजेक्ट किए होंगे। पैसे वैसे का कोई लालच नहीं है। हैट्स ऑफ। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके

अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची

0: भाई दिलीप कुमार साहब के बारे में कहा जाता था कभी कि वो बहुत इंट्रोवर्ट हैं, कभी कहा जाता था कि वो बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं, और कभी कहा जाता था कि वो बहुत एरोगेंट हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यही सवाल जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था तो सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
1: इंसान की पर्सनैलिटी होती है या उसकी शख्सियत होती है, उसमें मुख्तलिफ पहलू होते हैं। हंसी खेल का एक पहलू होता है, लुत्फ लेने का पहलू होता है, फिर संजीदगी का होता है, फिक्रमंदी भी होती है। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, गुरूर या घमंड जो है वो इंसान की शख्सियत में एक बीमारी, एक मर्ज है, उससे बचने का। अब जो लोग मुझे ज़ाती तौर से जानते हैं वो तो जानते हैं, और जो लोग मुझे ज़ाती तौर से नहीं जानते वो नहीं जानते। और इस पोजीशन में ऐसे होता है कि आप ज़्यादातर जाके लोगों से मिलकर बात करें या अपनी किसी मसले की वजाहत करें, ये एक नामुमकिन सी बात है। तो आर्टिस्ट की पर्सनैलिटी में ये तजाद जो है वो रहता है, लेकिन गुरूर और घमंड का अगर मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाए तो मुझे उस बात का वाकई सदमा हुआ।
0: बिल्कुल सही बात है यार, इंसान अपने अपनों के आगे, अपने लव्ड वंस के आगे तो एक्सट्रोवर्ट ही होता है ना। हर किसी से थोड़ी ना अपना सब कुछ शेयर करते फिरेंगे। फिलहाल मैं आपसे जो शेयर कर रही हूँ वो है एक स्माइल, आप भी स्माइल कीजिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: ये मैंने डिसाइड कर लिया है कि अगली बार से जब भी मैं दिलीप कुमार साहब का कोई इंटरव्यू सुनूंगी ना, तो साइड के टैब में उर्दू डिक्शनरी खोल के रखूंगी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। क्या क्या लफ्जों का इस्तेमाल करते थे वो। तो ऐसे एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्योंकि वो एक पठान फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके फादर ये थिएटर एक्टिंग वगैरह के सख्त खिलाफ थे, और यूजुअली ऐसा समझा जाता है कि पठान जो है अंदर से चाहे भोले मासूम कुछ होते हैं और बाहर से एकदम रफ एंड टफ, तो ये एक्टिंग करने वाली एक जो सेंसिटिविटी होती है ये इनके अंदर कैसे आई, इस बारे में सुनिए दिलीप कुमार साहब ने यूसुफ खान साहब ने क्या कहा था।
1: पठान लोग आमतौर से फनून लतीफा से उनकी इतनी वाबस्तगी नहीं जितनी के जफाकशी या जवामर्दी से उनका नाम मुतालिक किया जाता है। लेकिन मैं खुद भी इस बात को समझ नहीं पाया, ये सोचता हूँ कि सूए इत्तेफाक में एक फिल्म एक्टर बन गया, और कुछ शायद मेरे बचपन के वाकयात और जो हादसात उनकी कुछ नौयत इस किस्म की थी कि अंदरूनी तौर से मुझ में एक जज्बाती कैफियत जो थी वो ज्यादा शदीद थी।
0: उफ उफ उफ उफ, फनून लतीफा, बाबस्तगी, जफा कशी, कैफियत शदीद, मर गई मैं। वैसे छोटे होते से ये एक्टर नहीं बनना चाहते थे, बड़े होके सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो गए कि ये सिर्फ एक्टर नहीं बने, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर बने। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Kohinoor of Indian Cinema. OG Handsome. Dilip Kumar Special. With Charu. With Charu. On Purani Jeans. Only on Mirchi.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Nabiyat wala murga. Mirchi, murga.
3: हेलो
4: हेलो बेटा नवनीत
3: आप कौन
4: पापा कहाँ हैं
3: पापा तो बाहर हैं बताइए
4: बेटा ऐसा है आपके पापा और मैं हम हाँ। बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे को बता रहा था आशीष आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है उसे बात कर लेना फोन पे कभी उससे पूछ लेना मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है चलो हर बच्चा कर देता है लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा अब वो किसी को डांट नहीं सकता अच्छा बेटा तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लीजो क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी भी बात पे तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या
3: लेकिन आपको काम क्या है
4: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था
3: पापा ने कहा था
4: चुप कर पापा ने कहा था मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने उठा के पटक के रख दूंगा बता रहा हूँ मतर को
3: क्या हुआ अंकल
4: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं उनको कुछ जरूरी काम था आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में
3: अब मुझे क्यों डांट
4: चुप कर
3: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से आप मेरी बात सुनो मैं पापा से बात कर लूं
4: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं क्यों कर रहा था तूने
3: पापा को ऐसे किस बात का मुझे ये भी नहीं
4: पापा को किस बात का बुरा लगा इससे मेरे को क्या लेना देना है असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना
3: लेकिन बुरी क्या
4: अंकल कल भी आखो एक मारूंगा
3: बदतमीजी क्या करी
4: बेटा ये अपने पापा से पूछना ना मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं
3: कह रहा मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में
4: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं
3: ठीक है मैंने वो भी कर लिया मैं बदमाशी
4: ठीक है मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे
3: क्या बोलूं
5: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था तुम रेडियो मिर्ची पे
3: रेडियो मिर्ची आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को
4: चुप कर मारूंगा घुमा के पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: तेरा क्या होगा कालिया
7: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
6: अब मिर्ची खा
8: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची

0: दिलीप कुमार साहब जब बात करते थे तो ऐसा लगता था कि कोई शायरी बोल रहे हैं, कविता बोल रहे हैं, कुछ पोयम बोल रहे हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सभी जुबानें उनकी इतनी साफ, इतनी प्यारी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि उनको ये जो फेम, इतनी पॉपुलैरिटी मिली है, इसके बारे में ये क्या सोचते हैं।
1: शोहरत और नाम जो है, इससे एक अच्छे आर्टिस्ट को या किसी भी आदमी को हमेशा गैर मुतालिक रहना चाहिए। शोहरत वो मेरी है, अगर मैं ये समझने लगूँ तो मेरी सेहत के ख़िलाफ़ बात होगी। अल्लाह की कुदरत है, मैं पैदा हुआ जिस घर में, वो उसमें मेरा इरादा नहीं था, मैं अपने इरादे से आया नहीं, मैं अपने इरादे से यहाँ नहीं पहुँचा, और जिस दिन इस दुनिया से जाना है उसका मैंने कोई इंतज़ाम नहीं किया। तो शोहरत हो या बदनामी हो, रसवाई हो, वो दी हुई, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से है। कोशिश अपने तो यहाँ मेरा फ़र्ज है, मैं कोशिश करता रहूँ। मैं यही चाहूँगा कि मैं एक बेहतर इंसान बन सकूँ, बेहतर काम कर सकूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसी बात पे हम लेंगे ब्रेक। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Cinema. OG Handsome. Dilip Kumar Special. With Charu. With Charu. On Purani Jeans. Only on Mirchi.
1: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
2: अच्छा है।
1: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई।
2: हाँ हाँ सुना।
1: जून भी आ गया। जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
2: मतलब
1: विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
2: तू चले?
1: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
2: और कुछ?
1: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
2: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
1: जनवरी में ही बताया था।
0: Visit Virani Jewelers on Oak Tree Road. 0% making charges on 22 carat and diamond jewelry and 100% value on your gold trade-in. Visit ViraniJewelers.com.
1: Celebrate freedom with Mirchi. July 4th Independence Day se August 15th Independence Day tak. Sirf freedom hi freedom.
3: Only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
4: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
5: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
4: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
7: एक ही होता है।
4: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: द कोहिनूर ऑफ इंडियन सिनेमा, ओजी हैंडसम, दिलीप कुमार स्पेशल विद चारू। विद चारू ऑन पुरानी जीन्स, ओनली ऑन मिर्ची। Only on Mirchi.

0: दिलीप कुमार साहब ने पता नहीं कितने एक्टर्स को इंस्पायर किया है, अपने कंटेम्प्रेरीज लाइक बलराज साहनी साहब को भी और आने वाली जेनरेशंस, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, नसीरुद्दीन शाह, कमल हासन, आमिर खान, शाहरुख खान, और इसीलिए दिलीप कुमार साहब को, क्योंकि वो इतने फिनोमिनल एक्टर थे, उनको कोहिनूर ऑफ इंडियन सिनेमा, अभिनय सम्राट और खास करके ट्रेजेडी किंग बुलाया जाता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और क्यों उनको ट्रेजिक रोल्स में इतनी पॉपुलैरिटी मिली, इस बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था।
1: ट्रेजेडी यानी अलमिया किस्म की कहानी का असर ज्यादा होता है, जैसे लैला मजनू की दास्तान या शीरिन फरहाद का वो किस्सा आप समझ लीजिए। ट्रेजिक कहानी होगी उसका असर और गम का, तकलीफ का या रंज का असर जो होता है वो देरपा होता है, खुशी और मुसर्रत जो है वो जल्दी गुजर जाती है। मेरे ख्याल से जहाँ तक कि ये अलमिया अदाकारी का जो इम्प्रेशन ज़्यादा देर तक कायम रहा है वो इसीलिए है कि अलमिया कहानी जो है वो बजाते खुद देर पर असर रखती है।
0: चलिए इसी बात पे इनका एक सैड ट्रेजिक लेकिन आइकॉनिक गाना सुनेंगे, जिसके बताने कितने रीमेक्स बन चुके हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ पुरानी जीन्स पर ओनली ऑन मिर्ची।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: The Kohinoor of Indian Cinema. OG Handsome. Dilip Kumar Special. With Charu. On Purani Jeans. Only on Mirchi.

0: दुनिया को जब पता भी नहीं था कि मेथड एक्टिंग नाम की कोई चीज होती है, तब से दिलीप कुमार साहब मेथड एक्टिंग कर रहे थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मतलब इस तरह की एक्टिंग जहाँ पे आप वो किरदार बन जाते हो, उसको घोट के पी जाते हो, फिर आप एक्टिंग कहाँ करते हो? सब नेचुरली एफर्टलेसली होता है। और क्योंकि दिलीप कुमार साहब अपने किरदारों में इतना घुस जाते थे, खास करके उनके जो ट्रेजेडी रोल्स होते थे, वो उनकी मेंटल हेल्थ पे काफी असर डालते थे। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: खास तौर से उस वक्त जबकि हम अपने काम से जाती तौर से बड़े मुतासिर होते हैं। वो कहता है भाई ये आपकी माँ है और ये मर गई है, अब हमको मालूम है कि ये माँ नहीं है, ये मर गई, मरी भी नहीं है, ये जिंदा है, इनका नाम ललिता पवार है, ये जाग रही थी अभी, इन्होंने पेट भर के खाना। लेकिन अपने ऊपर वो एक हावी करना है एक जज्बे को, ये किस्म की शदीद यानी सजा है अपने नर्वस इक्विपमेंट को, यानी रोज रोज या हर साल अगर आदमी करता रहे तो वो इसका असीर हो जाता है। हर कहानी में समझिए ना कि रंज और तकलीफ, और रोज सुबह उठिए तो नहा धो के कपड़े बदल के आप स्टूडियो में पहुंचे तो कोई रोने मरने का सीन, इस किस्म की चीज जो है वो इंसान के ज़हनी नशोनुमा पर वो असरअंदाज होती है
0: जी। और फिर इसके बाद इन्होंने काफी एक्टिंग कोचेस से, साइकेट्रिस्ट से सलाह मशवरा किया और ट्रेजेडी रोल्स छोड़ के कॉमेडी, एक्शन या लाइट हार्टेड रोल्स करने शुरू किए। हम सुनेंगे दिलीप कुमार साहब का ये थोड़ा सैड बट क्लासिक गाना पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई।
1: हाँ हाँ सुना।
0: जून भी आ गया। जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब?
0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तो चले,
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: Visit Virani Jewelers on Oak Tree Road. 0% making charges on 22 carat and diamond jewelry and 100% value on your gold trade-in. Visit ViraniJewelers.com.
0: Celebrate freedom with Mirchi. July 4th Independence Day se August 15th Independence Day tak. Sirf freedom hi freedom.
3: Only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot. It's hot.
4: Radio Mirchi, it's hot.
3: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई,
1: हाँ हाँ सुना,
0: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब
0: विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तो चले,
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: Visit Virani Jewelers on Oak Tree Road. 0% making charges on 22 carat and diamond jewelry and 100% value on your gold trade-in. Visit ViraniJewelers.com.
0: Celebrate freedom with Mirchi. July 4th Independence Day se August 15th Independence Day tak. Sirf freedom hi freedom.
3: Only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot. It's hot. 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: रेडियो मिर्ची 92.7 FM,
0: Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

गगन घिरे बदरा, सगन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। शाम कन्हाई ले जाओ इसको घर, राधे ले जाओ इसको घर, राधे ले जाओ इसको घर।

पाटली धान कुंज में राधा माधव की यह लीला, राधा माधव की लीला सर्वोत्तम हो।

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या दुख के समय एक छोटा सा जेस्चर भी किसी के लिए हिम्मत बन सकती है? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर श्रेया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत छोटा सा गांव है और उसमें बहुत खूबसूरत सी प्रथा है कि उस गांव में जब भी किसी फैमिली में कोई मौत होती है तो उस फैमिली के लिए सारे विलेजर्स, सारे गांव वाले अपने घर के बाहर कोई एक चीज शिफ्ट करते हैं। और जब उनसे पूछा गया कि एक रिसर्चर था, उन्होंने जाके उस गांव के मुखिया को पूछा कि ऐसा वो क्यों करते हैं, तो कहते हैं कि ताकि जब जिस फैमिली ने जिसको खोया है वो अगली सुबह जब उठें तो देखें कि हमारे आसपास सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि उनकी जिंदगी में सब कुछ बदल चुका है। और ये बहुत खूबसूरत सी प्रथा है, क्योंकि दरअसल ज्यादातर क्या होता है कि हमारी जिंदगी में हम देखते हैं कि जो जिसके घर में लॉस होता है उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा वॉइड हो जाता है, लेकिन उसके आसपास बिजनेस इज एज यूजुअल, तो उनको बड़ा महसूस हो रहा होता है। तो मुझे बड़ी खूबसूरत ये लगी बात, ये हमारी लाइफ से बहुत अलग है। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है कि किसी के घर में अगर मौत हो तो शुड इट बी बिजनेस एज यूजुअल अराउंड देम? इसके बारे में कुछ कर सकते हैं?
4: सी, वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक कि हम एक दिन के लिए वो शिफ्ट ले आएंगे बाहर, उसके बाद तो आपको पता ही है सब कुछ यूजुअली चलता है। लेकिन जिनके घर से कोई गया है उनके घर में बड़ा वॉइड, आप जैसे कह रहे हैं ग्रीफ है, बाहर सब कुछ नॉर्मल चले या शिफ्ट हो जाए, उससे बहुत बड़ा फर्क तब तक नहीं पड़ता जब तक वो अपने वॉइड को ओवरकम नहीं करते, वो अपने ग्रीफ को ओवरकम नहीं करते। इफ दे डोंट कम आउट ऑफ इट, बाहर सब कुछ भी परफेक्ट हो या नहीं भी परफेक्ट हो, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ये काइंड जेस्चर है। ये जेस्चर्स होना जरूरी भी होता है, क्योंकि उस समय आपको फील होता है कि एवरीबॉडी इज स्टैंडिंग विद मी।
3: जी बिल्कुल,
4: एज अ कम्युनिटी कुछ जेस्चर्स हमें कंफर्टेबल फील कराते हैं, हमें ये फील कराते हैं कि हम अकेले नहीं है, हमारे साथ बहुत लोग हैं। तो वो एक सपोर्ट जरूर देता है, और ग्रीफ के समय में कम्युनिटी का सपोर्ट होना, कम्युनिटी हमारे साथ होना बहुत हेल्प करते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: एक सडन लॉस से कैसे डील करें? आइए इस बारे में समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो हाल फिलहाल में सिस्टर श्रेया, हमारे मिर्ची के फैमिली में वी लॉस्ट अ मेंबर, बहुत प्यारे, बहुत लोकप्रिय सिड उनका नाम था, दिल्ली में रहने वाले थे, दरअसल जम्मू से हैं, एंड वी लॉस्ट हिम इन मे, अर्ली मे, और बहुत सडन लॉस था। बहुत ही लोकप्रिय, बहुत हसमुख, जीवन से भरे हुए, और जब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके अपने नहीं होते, लेकिन किसी ना किसी तरह वो आपकी जिंदगी में इस तरह घुस जाते हैं कि वो अपने से लगने लगते हैं, उस तरह के थे सिड। और जब एक सडन लॉस होता है ना, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, तो बड़ा धक्का लगता है। तो ऐसे सडन लॉस को सहने के लिए क्या किया जाए?
4: से डेथ सबसे डिफिकल्ट पेपर होता है, इसलिए फियर ऑफ डेथ भी बहुत ज्यादा होता है, या फियर ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन भी बहुत ज्यादा होता है। बट इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट डेथ इज, मे बी हमारे लिए उस चीज को एक्सेप्ट करना इजी हो जाएगा। मृत्यु है क्या? वेन बी से कि अब नहीं रहे तो क्या नहीं रहा एक्चुअली में? जो चीज नहीं रहती है वो है जस्ट द बॉडी। डेथ इज जस्ट चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस।
3: चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस,
4: जो चीज चेंज होता है, इट्स अ सोल ऑन अ जर्नी।
3: पोशाक और आपका जो एड्रेस है,
4: वो जो सोल जो जिससे आपको प्यार था ना, वो नहीं मरे। आप देखें, जब हमें पता चलता है कि किसी ने शरीर छोड़ा, हम उसके हॉस्पिटल से बॉडी लेकर आते हैं या कुछ भी, तो फर्स्ट चीज हम क्या करते हैं, हम उसके बॉडी को या बरी करेंगे या बर्न करेंगे। पर हम किसको बर्न कर रहे होते हैं? हम कहते हैं हम किसका अंतिम संस्कार करके आए?
3: शरीर का
4: खत्म हो गया ना। लेकिन फिर 3-4 दिन के बाद हम क्या करते हैं?
3: प्रेयर सर्विस करते हैं।
4: एक प्रेयर सर्विस करते हैं, सब करते हैं, एक प्रेयर मीटिंग होती है। वो प्रेयर मीटिंग किसके लिए हो रही है?
3: आत्मा के लिए।
4: विच ये वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये दो अलग है। कोई कभी मरता नहीं है, कोई एक्चुअली में कभी मरता है ही नहीं। भले ये हो सकता है कि कोई 40 की एज में गया, 50 में गया, 70 में गया, पर हुआ क्या? सोल इटर्नल है। तो डेथ क्या है? आपने ड्रेस और एड्रेस चेंज किया। अब आप इमेजिन करें, एक घर को देखें जहाँ पर किसी ने शरीर छोड़ा है, और एक घर वहाँ पर देखें जिनको पता है कि अभी अभी एक नया मेंबर आने वाला है। वहाँ पर कैसा माहौल होता है?
3: खुशी का।
4: कोई प्रेग्नेंट है, आपको पता चला वोम में है, वो सोल जैसी एंटर होती है और पता है कि एक नया मेंबर आने वाला है, देयर इज सो मच हैप्पीनेस इन द एनवायरमेंट। और जहाँ से कोई गया होता है वहाँ पर बहुत सैडनेस होती है। बट इट्स लाइक यू आर ऑन अ जर्नी। अगर आप कोई जर्नी पर जा रहा है, आप कैसे उसको विदा करेंगे?
3: जर्नी पर जा रहा है तो खुशी से विदा करेंगे। अगर कोई ट्रेन में सफर कर रहा है, दूर कभी किसी पोस्टिंग के लिए जा रहा है, तो आप अपनी बेस्ट देंगे उसको। लेकिन यहाँ पे तो क्या होता है कि मुझे पता है कि मैं इसको कभी नहीं देखूंगा।
4: पर है तो जर्नी ना। आपको पता है कि आप दोबारा नहीं देखेंगे, तो और ही कैसे आपको विदा करना चाहिए? सी, आस्क योरसेल्फ टुडे, आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट हम सब अपने से एक सवाल पूछें अभी। अगर हमारा शरीर आज छूट जाए अचानक, हम पीछे वालों को कैसे देखना चाहते हैं?
3: खुशी में।
4: एंड दिस इज यू नो समथिंग विच इज वेरी कॉमन, सब कहते हैं यही उस व्यक्ति की आखिरी आश होती है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: हमें अपने कर्मों को क्यों सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, आइए इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन पता है कि मरना तो निश्चित है, लेकिन फिर भी इंसान इस मोमेंट के लिए कभी रेडी नहीं होता, और खुद रेडी हो भी जाए तो अपने आसपास वाले, अपने प्यार करने वालों के लिए कभी रेडी नहीं होता।
4: क्या लेकर के जाएंगे आप साथ में, वो भी जरूरी है। एक बार आप इमेजिन करें, आज लास्ट डे है, पता तो नहीं होता, पर अगर अपने को एक बार हम कहें अच्छा ठीक है मे बी आज लास्ट डे है, कल का सूरज हमने देखना ही नहीं है, आप आज का दिन कैसे बिताएंगे, क्या क्या करेंगे आज के दिन में?
3: वो सारे काम करेंगे, कोशिश करेंगे जो छूट गए, और जिससे एक्चुअली नहीं,
4: क्या करेंगे
3: आज सबसे ज्यादा उनके साथ समय बिताएंगे जो सबसे करीब है।
4: तो आप अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे और क्या करेंगे?
3: बस उनके साथ खुशियां बांटेंगे, जितना हो सके उनको देंगे।
4: और सोचें, आपका समय आ गया जाने का, इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू डू बिफोर यू लीव?
3: किसी से माफी मांगनी है तो सबसे पहले मांगेंगे,
4: आता है ना धीरे धीरे, किसी से माफी मांगनी है तो मांगेंगे, किसी को माफ करना है
3: वो कर देंगे,
4: तो कर देंगे। और क्या करेंगे?
3: कोई हिसाब पूरा रह गया तो कर लेंगे,
4: कोई हिसाब पूरा रह गया तो कर देंगे, कोई विल आदि बनानी है तो बना देंगे। ये जीवन जीने का तरीका है, लेकिन ये हमें कब याद आता है? अच्छा, आप शरीर छोड़ना है तो हम उनके साथ समय बिताएंगे, माफी मांगेंगे, अगर किसी भी तो मोमेंट पर छूट सकता है ना। दिस इज वे ऑफ लिविंग, स्पेंडिंग टाइम विद पीपल हु यू लव। अगर किसी को दुख दिया है तो अपोलोजाइज करना, किसी को माफ करना है तो कर देना, जो सेटल करना है वो

0: कर लेना, कुछ कैरी फॉरवर्ड न रहे। सो किसी की भी डेथ हमें ये भी सिखाती है कि जीवन कैसे जीना है। एक कहानी वो सुनाते हैं कि एक राजा था, उसकी चार रानियां थी, उसको सबसे ज्यादा अपनी जो चौथी रानी थी उससे सबसे ज्यादा प्यार था, बहुत उसका ध्यान देता था, महंगे कपड़े खरीद कर देता था, बहुत अटेंशन देता था। तीसरी रानी थी उससे भी बहुत प्यार था, उसको जब किसी और राज्य दरबार के साथ मीटिंग शादी होती थी तो उसको दिखाता था, थोड़ा सा छिपा के भी रखता था। ऐसे जो दूसरी रानी थी उससे भी प्यार था, और पहली रानी से बहुत प्यार नहीं था, लेकिन पहली रानी को उससे बहुत प्यार था। फिर एक दिन आया जब राजा को पता चला कि उसकी तबीयत बहुत खराब है और अभी जाने का समय आ गया है, तो उसने सोचा कि सबसे ज्यादा प्यार तो मुझे अपनी चौथी रानी से है, तो उसने उसको पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो उसने कहा हो ही नहीं सकता। तो जैसे उसने कहा हो ही नहीं सकता तो उसका तो दिल ही टूट गया। फिर उसने ट्राई किया थर्ड रानी को पूछने के लिए कि मैंने तुम्हारा इतना ख्याल रखा, हर जगह तुम्हें लेकर के गया, तो उसने कहा नहीं नहीं, लाइफ इज टू गुड, आप चले जाएंगे तो मैं किसी और की हो जाऊंगी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। फिर दूसरी रानी जिसके साथ वो दिल की हर बात करता था, हर सीक्रेट कन्फाइड करता था, उसने कहा आप चलेंगे, तो उसने कहा देखो थोड़ी दूरी तक तो मैं आ सकती हूँ, लेकिन उसके बाद ये सफर आपको खुद ही करना पड़ेगा। बाय दैट टाइम ही वॉज वेरी सैड। फिर पहली रानी ने कहा मैं आपके साथ चलो, और वो बहुत माल नरिश्ड थी, और फिर उसने उसको देख करके कहा कि इसका सबसे ज्यादा ध्यान मुझे रखना चाहिए था पर मैंने नहीं दिया। अब वो चार रानियां हम सबके जीवन में है। पहली बॉडी जिसके लिए हम बहुत ध्यान करते हैं, महंगे कपड़े खरीद करके देते हैं, सब कुछ करके देते हैं,
1: मतलब वो चौथी रानी है।
0: हाँ, लेकिन वो भी कहाँ तक, आखिर तो सोल को वो सफर खुद ही तो करना है ना, शरीर तो साथ जा नहीं सकता। दूसरा जो थर्ड नंबर की रानी थी जिसको वो दिखावा करता था, राज्य दरबार में गया दिखाया, वो है ऑल द पोजेशंस, मटेरियल पोजेशंस, जिसको देख करके हमें बहुत खुशी भी होती है। हम दिखावा भी करते हैं, छिपा करके भी रखते हैं, लेकिन हमें पता ही है जैसे हम जाएंगे वो किसी
1: और की हो जाएगी,
0: और की हो जाएंगे। और तीसरी सेकंड नंबर की रानी हमारे संबंधी, जिनके साथ हम दिल की बातें करते हैं, अपने दुख दर्द उनके साथ शेयर करते हैं, कन्फाइड करते हैं, लेकिन वो भी कहाँ तक आ सकते हैं, शमशान तक। उसने कहा मैं थोड़ी दूरी तक आऊंगी, उसके बाद नहीं आ सकती, क्योंकि उसके आगे तो वो भी नहीं आ सकते। लेकिन वो पहली रानी जिसका हम ध्यान नहीं देते और वही हमारे साथ चलती है, वो है हमारे कर्म।
1: अच्छा,
0: आत्मा ने साथ क्या लेकर के जाना है, जो उसके कर्म है, चाहे सत्कर्म है या पाप कर्म है। द मोमेंट सोल नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में जाती है, उसका हॉरोस्कोप लिख दिया जाता है। पंडित जी उसके जन्म पत्री लिख देते हैं, किस आधार पर,
1: उसके कर्मों के आधार,
0: उसके कर्मों के आधार पर। तो न हम खाली हाथ जाते हैं,
1: न खाली हाथ
0: आते हैं, ना जाते हैं, लेकिन साथ में जो लेकर के जाते हैं वो है कर्म, और उसके ऊपर हम सबसे कम ध्यान देते हैं। वो हमारे पीछे पीछे आते हैं लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं, और वही एक चीज है जिसने हमारे साथ चलना है। तो ये कहानी है, सुनाई जाती है जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग दैट वी अक्वायर कैन ओनली कम विद अस टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एक डिस्टेंस तक, लेकिन एक ही चीज जो हमारे साथ जानी है वो है हमारे कर्म, इसलिए उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। कोई कर्म ऐसा नहीं करना चाहिए जो रिग्रेट हो, और अगर श्रेष्ठ कर्म किए हैं तो अगर कॉस्ट्यूम छूट जाए ना तो भी कोई हर्जा नहीं है। आपको आगे का कॉस्ट्यूम, आगे का परिवार बहुत अच्छा ही मिलना है, इसलिए जो सारा विश्वास होना चाहिए वो अपने कर्म, कर्म से भाग्य बनता है।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ग्रीफ को कैसे हैंडल करें, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, जब लॉस होता है किसी के परिवार में तो ग्रीफ बहुत होता है, और कुछ लोग होते हैं जो ग्रीफ को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हैं। वो बड़े होते हैं घर में या उनको पता होता है कि मेरे पीछे बहुत लोग हैं तो मैं इस वक्त टूट नहीं सकता। कुछ लोग होते हैं जो नहीं हैंडल कर पाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो चुप हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते, बात नहीं करते, कुछ लोग होते हैं जो बहुत बोलते हैं क्योंकि वो अनमने से अजीब से हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत रोते हैं, कुछ लोग होते हैं बिल्कुल नहीं रोते। तो हर इंसान का जो रिएक्शन होता है एक ही हादसे को लेकर वो बहुत अलग होता है क्योंकि हम अलग अलग लोग हैं। मेरा सवाल जो है वो कि इसको हैंडल कैसे करें।
4: हैंडल करें मना हम किसी के ग्रीफ को कैसे हैंडल करें,
3: दोनों कि हम खुद, जैसे अगर मैं ऐसा इंसान हूँ जो बहुत सदमे में हूँ
4: कि we have to understand that they have got a new costume and a new family and we have to allow them, you know, not only when somebody dies suddenly, critically भी जब कोई ill होता है ना, somewhere we know that they're suffering in that body a lot, माना actually में अगर उनको नया costume मिले तो उनके लिए बहुत अच्छा है, पर हम उनसे बहुत attached होते हैं, हम बहुत dependent होते हैं, तो हम उनको कहते हैं आप हमें छोड़ करके जा नहीं सकते, हम उनको पकड़ के रखते हैं, in a way वो और ज्यादा suffer करते हैं। अगर आपको पता है, जैसे कई बार डॉक्टर्स बहुत क्लियरली बता देते हैं कि अभी होप नहीं है, अभी कुछ दिन के हैं, हमने कई बार ये करके देखा है, हम कईयों को कहते हैं कि आप उनका हाथ पकड़ करके उनको बोलो कि इट इज ओके, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़े, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप उनको छुट्टी दो जाने के, आप उनको फ्री करो। आप विश्वास नहीं करेंगे, सामने सामने विद इन 10 मिनट समटाइम्स वो सोल चली जाती है और बहुत पीसफुली जाती है, क्योंकि वो केवल अटकी होती है। इट्स लाइक आपकी गाड़ी साथ नहीं दे रही, उसकी ब्रेक खराब है, उसका एक्सेलरेटर खराब है, लेकिन आपको वही गाड़ी चलानी है एज अ ड्राइवर, बहुत ज्यादा सफरिंग होती है। होप है तो सब कुछ करना चाहिए, पर कई बार जब नहीं होता तो हमें अपने अटैचमेंट को ओवरकम करना चाहिए, हमें उनके बेटरमेंट के लिए सोचना चाहिए कि अगर उनको नया कॉस्ट्यूम मिलेगा तो उसमें वो कंफर्टेबल होंगे, एंड समटाइम्स वी शुड यू नो सिट विद दैट सोल एंड अलाउ देम टू गो। इट मे साउंड डिफिकल्ट और इवन स्ट्रेंज, पर ये जरूरी है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: किसी के अपने के चले जाने के बाद आसपास के लोगों को कैसे संभालें? आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: आप जो कह रहे हैं तो मुझे गौतम बुद्ध की एक कहानी याद आ गई कि गौतम बुद्ध एक बार बैठे होते हैं और उनके पास एक माँ आती है एक बहुत छोटे से बच्चे को लेके, और वो आके बहुत गुस्सा करती है गौतम बुद्ध पे। वो कहती है कि मेरा हस्बैंड कुछ दिनों पहले वो मर गए और मेरे दो बच्चे और थे वो भी एक एक करके चले गए, अभी आखिरी एक बच्चा मेरा बचा हुआ था ये भी अब नहीं रहा, तो मैं कुछ नहीं जानती, इसको वापस जिंदा करिए आप, क्योंकि मेरा सब कुछ यही है। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? अगर आप भगवान हो या आप कुछ भी हो तो आप इन्हें प्लीज जीवित करिए। तो गौतम बुद्ध कहते हैं ठीक है, हो सकता है। तो उस औरत की जान में जान आती है, बोलती है हाँ बताइए क्या करना है। बोला आपको लेकिन कुछ करना पड़ेगा। बोले आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार। कहती है अभी काम करिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ मस्टर्ड के सीड्स चाहिए। तो किसी भी घर से जाके आप मस्टर्ड की सीड्स ले आइए, मैं इनमें डाल दूंगा, उनमें जान आ जाएगी। तो बहुत खुश होती है, तो बोलती मैं अभी लेके आती हूँ। बोला नहीं रुकिए, अभी पूरी बात नहीं हुई, आपको ऐसे घर से वो मस्टर्ड की सीड्स लाने हैं जिस घर में कभी भी कोई मौत नहीं हुई हो, तो कोई मृत्यु नहीं हुई हो। तो वो कहती है ठीक है, और वो अपने बच्चे को लेके हर घर में घूमती है गांव में, और धीरे धीरे उसको ये समझ में आ जाता है कि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे मृत्यु नहीं हुई, और वो आके फिर उस बच्चे को उनकी जो लास्ट राइट्स वो करती है। तो ये बात तो तय है सिस्टर श्रेया कि जिस दिन आप पैदा होते हैं उस दिन ही आपका काउंटडाउन जो है एक तरह से शुरू हो चुका होता है टुवर्ड्स योर एंड, लेकिन ये फिर भी ना एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है फॉर द पीपल हु आर स्टिल देयर। तो मैं आपसे ग्रीफ के बारे में बात करना चाहता हूँ, एक्सेप्टेंस के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जब ऐसा होता है तो हाउ डू यू हैंडल ग्रीफ, एंड मोर इम्पोर्टेंटली उनको कैसे हैंडल करें जो आपके आसपास हैं। तो कभी कभी आप देखते हैं आपके आसपास जो लोग हैं वो बिखर से जाते हैं, वो संभाल नहीं पाते अपने आप को, वो बहुत रो रहे होते हैं या बहुत शांत हो जाते हैं अचानक। कुछ लोग हैं जो ग्रीफ प्रोसेस करते हैं बहुत लंबे समय तक, कुछ लोग बहुत जल्दी उसे उभर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने परिवार में दोस्तों में कैसे हैंडल करें?
4: जैसे आपने कहा कि डेथ इनेविटेबल है, वो एक फैक्ट है कि जन्म है तो मृत्यु तो है ही, बट आई कैन अंडरस्टैंड जब कोई सडन डेथ होती है, यंग डेथ होती है, आप कई बार उस चीज के लिए तैयार नहीं होते और आप कई बार उसमें कहीं ग्रीफ में भी चले जाते हैं। तो जो जाने वाला है उसको भी ये समझना है कि आपकी ग्रीफ में जाने से और बहुत कुछ बिखर जाएगा, और इसलिए कई बार ऐसा भी होता है अ फादर चला गया, मदर अपनी ग्रीफ में चली गई, तो बच्चों के पास कोई भी सहारा नहीं होता।
3: बिल्कुल,
4: उनको कोई सहारा चाहिए, कोई बात करने वाला चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए। सो अपने को रिमाइंड कराना पड़ता है कि मेरे ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बोझ की तरह नहीं ले, पर वो आपका पार्ट है। जो गया है वो एक और अच्छा पार्ट बचाने गया है, ये चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। हमें लगता है वो क्यों चला गया, लेकिन वो और सुंदर बहुत अच्छा कोई पार्ट बजाने के लिए आगे गया होता है। इट इज प्रीडेस्टिन्ड, कारण कुछ भी बन सकता है, लेकिन वो डेथ तो थोड़ी निश्चित ही होती है, प्रीडेस्टिन्ड होती है। सो अभी वो गया, मेरे ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मदर फादर दोनों का रोल मुझे प्ले करना है, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। हमें दूसरे को भी जो हेल्प करना है वो इसी तरह से कि ग्रेजुअली, जब हम कई बार हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती दुख इस बात का होता है मर गया, जब ये समझ में आता है अच्छा मरा नहीं है, है तो इटर्नल, आगे पार्ट पर जाने गया है, एक न्यू बिगनिंग है, एक न्यू, सो दैट गिव्स मी लॉट ऑफ सोलेस। आई मीन दैट इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड व्हेन पीपल फाइंड आउट कि अच्छा मरा नहीं है, इटर्नल है, बस आगे पार्ट पर जाने गया, अ न्यू बिगनिंग, सो दे स्टार्ट हैविंग अ कन्वर्सेशन एंड दे स्टार्ट फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट। तो अपने को ही हमें उससे बाहर निकालना है, हम दूसरा थोड़े समय तक मदद कर सकता है, बट एक्चुअली यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2। अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
1: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, EKG एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स।
0: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस। फॉर एनरोलमेंट कॉल 9088222002 और विजिट aimseducation.edu।
2: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: किसी अपने की डेथ के बाद उन्हें हमें कैसे याद रखना चाहिए, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, कभी कभी ना अलग अलग लोग अलग अलग तरीके अपना लेते हैं। आई लॉस्ट माई मम सिक्स एंड हाफ ईयर्स बैक, तो मुझे अभी भी मैं अपनी मम्मी से बात करता हूँ। ये मेरा तरीका है कोप अप करने का, और मुझे लगता है वो हैं आसपास और वे मेरी मदद करती हैं, वो मुझे गाइड करती हैं, मुझे लगता है वो हैं। तो कभी कभी मैंने ये बात कभी किसी से कही नहीं, तो कभी कभी ऐसा भी नहीं लगता है कि क्या मैं कुछ ज्यादा ही अटैच नहीं हूँ, क्या मैं उनको मूव ऑन करने नहीं दे रहा हूँ। जैसे आपने कहा, वो कोई और काम करने गई, कहीं और शरीर में गई है, अपने दूसरी इनिंग्स के लिए गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने ही उन्हें रोक रखा है?
4: आप उनको कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उनकी सबसे गहरी छाप आपके जीवन के ऊपर है। जो आज आप है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपका वैल्यू सिस्टम है, जो आपके संस्कार है, आपकी सफलता है, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो आप नहीं भूल सकते। यू डोंट अलाउ देम टू मूव ऑन। जब आप बार बार कहते हैं आप क्यों चले गए, आप क्यों चले गए, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए, वो वाइब्रेशन उनको तकलीफ देता है। पर अगर आप उनको याद करते हैं, और हम जैसे याद करते हैं तो हमारे पास प्लेथोरा ऑफ एक्सपीरियंस है, वो होते तो क्या कहते, वो होते तो क्या गाइड करते।
3: बिल्कुल,
4: वो हमें स्ट्रेंथ देता है, हमें गाइडेंस देता है, हमें दिशा देता है, विच इज परफेक्टली ऑल राइट। इसीलिए मैंने कहा था कि एक्चुअली तो वो मरे ही नहीं होते, वो तो बहुत सारी यादें, विजडम, संस्कार हमें दे करके गए होते हैं। तो इन अ वे तो हमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। इनफैक्ट प्रेयर मीटिंग में भी क्या होना चाहिए, देयर आर समटाइम्स लॉट ऑफ क्राइंग, और अगर कोई नहीं रोता तो भी उस चीज को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता, लगता है शायद इनको
3: सदमा ही नहीं पहुंचा,
4: प्यार नहीं है,
3: प्यार नहीं था।
4: एक्चुअली में अगर आपको प्यार है, तो जैसे हमने पहले भी कहा, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पीछे सब स्टेबल हो। तो अगर आप नहीं रोते तो इन अ वे आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। आप उनको कहते हैं कि हम ठीक हैं, हम आपको मिस जरूर करेंगे, बट वी आर ओके। यू नो, इवन दिस वन लाइन वी आर ओके गिव्स देम सो मच कम्फर्ट। अपने से पूछ ले, हमारा शरीर छूट जाए, This is only one line that I want to hear. पीछे वाले कहे, we are okay, it's okay, we are fine, you move on. So वो उनको बहुत comfort देता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा with विशाल सेठिया and ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया। Only on मिर्ची, it's hot.

0: Recharge Morning, only on Mirchi. It's hot. Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या ग्रीफ हम खुद क्रिएट करते हैं? आइए लाइफ के इस अहम बात को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रीफ एक रिवर की तरह है। वो कभी कभी रिवर में आप टिपटो करते हैं और कभी कभी इमीडिएटली आप चले जाते हैं, आप स्विमिंग करने लगते हैं उसमें। तो कोई लोग 15 दिन में निकल आते हैं इस सदमे से और कुछ लोगों को 6 महीने लगते हैं। तो इसका कोई सही समय नहीं है, क्योंकि कई बार इंसान बोलता है कब तक तुम दुख मनाओगे, कब तक, तुम्हारा तो खत्म ही नहीं होता। ये भी एक तरीके से उस समय आप सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हर इंसान को अपने हिसाब से, जैसे हम सब अपने हिसाब से जीवन जीते हैं, हम सबका जो पेस है वो हर चीज में अलग है। ग्रीफ का भी अलग समय हो ही सकता है।
4: पर ग्रीफ सेल्फ क्रिएटेड है ना, कोई चीज बनी निमित्त, जैसे आपने कहा कि कोई 15 दिन, कोई 1 महीना, कोई 6 महीना, कोई 1 साल। अब ये पीरियड अलग क्यों हो रहा है? एक ही सिचुएशन में किसी ने घर में शरीर छोड़ा, एक है जो 15 दिन में उभर गया, एक है जो 1 साल लगा रहा है। माना इट इज सेल्फ क्रिएटेड ना, अंदर आप उसको क्रिएट कर रहे हैं। आप उस चीज से बाहर ही नहीं आना चाह रहे, आप उस दर्द से बाहर ही नहीं आना चाह रहे। तो अगर कोई आपको उससे बाहर निकालना चाह रहा है तो वो गलत तो नहीं है, क्योंकि वो रियलिटी को देख सकता है कि अगर आप अपनी ग्रीफ से बाहर नहीं निकलते तो और कितना नुकसान हो सकता है। आप शायद नहीं देख सकते, दर्द का भी एडिक्शन हो जाता है। आपको वो कंफर्टेबल लगने लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप उस दर्द में रहना चाहते हैं, बट फिर बाद में आपको रियलाइज होता है कि अरे इसके कारण बहुत लॉस हो गया। सो लाइक आई सेड, डोंट, टाइम आपकी क्रिएशन है, समय आपकी रचना है, आप रचता है, आप क्रिएटर है। होना इतना पावरफुल चाहिए कि आप समय से पहले अपने को उससे बाहर निकाल सके। और वैसे जैसे हम अगर एक बार अंडरस्टैंड करें, ग्रीफ होना भी नहीं चाहिए। ग्रीफ इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। सेलिब्रेशन होना चाहिए, एक न्यू बिगिनिंग है। उनकी बहुत वंडरफुल लाइफ थी, लेट्स सेलिब्रेट दैट लाइफ एंड नाउ दे हैव गॉन फॉर अनदर रोल। व्हाई ग्रीफ? आई एम नॉट सेइंग पीपल आर रॉन्ग। All I'm saying is when you understand, then you feel कि नहीं जरूरत है ग्रीफ की। अगर आप बहुत डिपेंडेंट थे उनके ऊपर, सो वो वॉइड आपको फील होगा, बट अदरवाइज अगर आप अंडरस्टैंड करें तो आप उस ग्रीफ को ओवरकम करके बहुत अच्छी मेमोरीज आपको दे करके गए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
0: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
0: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
2: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। अब अगला सवाल जो है सिस्टर श्रेया, वो पारमिता सेन शर्मा भवानीपुर कोलकाता से आया है। वो कहती हैं कि मैं बहुत पॉजिटिव थिंकर हूँ, मगर किसी सिचुएशन के कारण मेरी बेटी जो है उसको मैं हमेशा पॉजिटिविटी के बारे में बताती हूँ और हमेशा यही सिखाती हूँ, लेकिन आजकल वो हॉस्टल में रहती है, मुझसे दूर रहती है, और मैं देख रही हूँ कि बहुत एंग्शियस रहती है, परेशान रहती है, एग्जाम के पहले बीमार पड़ जाती है, रिजल्ट के बारे में सोचती है, जबकि मैंने कभी भी उसको ना मार्क्स के लिए ना रिजल्ट के लिए प्रेशराइज किया है। आजकल मैं देख रही हूँ वो कॉम्पिटिशन की तरफ भी लगी हुई है, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन है, और मुझे लग रहा है कि एंग्जाइटी जो है वो उसके अपने फादर के साइड से मिली है, हालांकि मैंने उसको उससे दूर रखने की कोशिश की है, मैं क्या करूं?
2: कभी कभी हम सारी सही गाइडेंस देने के बाद भी अगर वो एंजाइटी से गुजर रही है तो ये जरूरी नहीं है कि आप ही उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। आजकल बच्चे खुद भी अपने ऊपर प्रेशर डालने लगते
1: बिल्कुल।
2: हैं। कभी कभी होते हैं हम उनको कंपेयर कर रहे हैं, कई बार वो ही अपने को कंपेयर करने लगते हैं,
1: क्योंकि आसपास उनके बहुत प्रेशर होता है, बाकी सारे बच्चे वैसे होते हैं,
2: बहुत ज्यादा कम्पेटिटिव वर्ल्ड है, और आपको लगता है कि अगर आप उस कॉम्पिटिशन में नहीं उतर पाते सो मे बी यू आर नॉट समथिंग, आप अपनी सेल्फ वर्थ भी उससे डिसाइड करते हैं। सो फर्स्टली एज अ पेरेंट आप ये नहीं सोचे कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं।
1: जी,
2: बहुत करके क्या होता है, जब भी हम बच्चे के अंदर कुछ देखते हैं तो हम उसका ब्लेम खुद पर लेना चाहते हैं। पेरेंट्स में ये बहुत ज्यादा हो जाता है, हम गिल्ट में जाने लगते हैं, हम उसका ब्लेम लेने लगते हैं, हमें लगता है कि हमने शायद कुछ राइट नहीं किया।
1: सही बात है।
2: तो वो जरूरी नहीं है, बहुत इन्फ्लुएंसेस होते हैं, एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस है, पीयर का इन्फ्लुएंस है, जिस प्रकार के इन्फॉर्मेशन वो कंज्यूम करते हैं उसका इन्फ्लुएंस है, जेनेटिक इन्फ्लुएंस है। सो हर एंजाइटी मे हैव नथिंग टू डू विद यू। नाउ द सेकंड थिंग इज, बट इट इज अ फैक्ट कि उनकी बेटी उस चीज से गुजर रही है और वो हेल्प करना चाहते हैं।
1: जी।
2: पहली हेल्प यही होती है कि उसकी एंजाइटी को देख देख कर मदर को एंशियस नहीं होना है।
1: जी, ये बहुत जरूरी है।
2: जो वो कहीं पर उनके उससे पता चल रहा है कि उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर आने लगा है। मदर और डॉटर ऐसे कनेक्टेड होते हैं, पेरेंट चाइल्ड, की हर वाइब्रेशन एक दूसरे को पहुंचता है, इसीलिए इस रिश्ते में बहुत अटैचमेंट होती है, पर जब तक डिटैचमेंट नहीं हो आप हेल्प भी नहीं कर सकते।
1: सही बात है।
2: इसलिए आपको पहले डिटैच होना पड़ेगा। हर आत्मा एक अपनी इंडिविजुअल जर्नी पर होती है, हर बच्चे के जीवन में उसके उतार चढ़ाव होते हैं, उसका कार्मिक अकाउंट होता है, उसके अनुसार उसके आने वाले जीवन में चैलेंजेस भी होते हैं और प्राप्तियां भी होती हैं। एज अ पेरेंट, एवरी पेरेंट यही चाहता है कि मेरे बच्चे की जर्नी परफेक्ट हो, भले मेरे जर्नी में कितना भी उतार चढ़ाव था इट इज ओके, पर उसके जीवन में नहीं हो। वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि वो एक अलग सोल ऑन हर जर्नी है। पेरेंट को थोड़ा ट्रस्टी बनने की जरूरत है। हम लोग थोड़ा ओनरशिप में चले जाते हैं, मेरा बच्चा,
1: बहुत बढ़िया,
2: हाँ ओनरशिप है ना, मेरा बच्चा है, परफेक्ट होना चाहिए, एंशियस नहीं होना चाहिए, इतने मार्क्स आने चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, वट एवर आई हैव, मैंने अंदर एक इमेज देख लिया कि मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए। आप ओनर नहीं है, आप ट्रस्टी हैं। ये अपने को रोज सुबह याद दिलाना चाहिए कि वो एक डिफरेंट सोल है, उसका जो रोल है वो बच्चे का है, मेरा जो रोल है एज अ पेरेंट है, और ये बहुत ब्यूटीफुल रोल मुझे मिला है मेरे बच्चे को सस्टेन करने के लिए। सो आई हैव टू प्ले इट रियली वेल। हाउ आई प्ले इट वेल इज, वन, आई डोंट गेट अफेक्टेड, इट टेक्स लॉट ऑफ पावर कि उसकी नेगेटिविटी मुझे इफेक्ट नहीं करे। सेकेंड, आप उससे बात करें, कुछ अच्छी वीडियोस, कुछ अच्छे मैसेजेस उनको भेजें जो उनको एम्पावर करें। थर्ड, उनको भी अपनी जर्नी में थोड़ा नेविगेट करने दें। कई बार गिर करके भी हम खड़ा होना सीखते हैं,
1: ये बहुत जरूरी भी है, वरना हम अपनी जिंदगी उन पे थोप रहे होते हैं।
2: जी,
1: ये बहुत जरूरी है कि वो खुद सीखें।
2: मतलब उनके भी जीवन में कुछ सक्सेस, कुछ फेलियर्स, कुछ एक्सपीरियंसेस तो होंगे ना, जरूरी से ज्यादा वो होता ही है, आप कितना भी चाह लें।
1: सही बात।
2: आप कितना भी कोशिश करें, क्योंकि उनके ऊपर कई चीजों के इन्फ्लुएंसेस है ना, अब आप पीयर को नहीं हटा सकते, आप एनवायरमेंट को नहीं चेंज कर सकते, आप सोशल मीडिया को बंद नहीं कर सकते, तो दे हैव देयर ओन सेट ऑफ इन्फ्लुएंसेस। आप एम्पावर करें कि उन इन्फ्लुएंसेस का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़े। आप उनके साथ पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करें, आप मेडिटेशन में बैठ करके उनको पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करें, वो कनेक्टेड है आपसे, आप भी मेडिटेट करेंगे तो वो वाइब्रेशन भी उनको पहुंचेगा।
1: बहुत बढ़िया।
2: मैंने घर में अगर एक भी मेडिटेट करता है, जितने लोग उससे कनेक्टेड हैं वो सब अपलिफ्ट होते हैं, क्योंकि वो उनको याद करते हैं, वो अपलिफ्ट होंगे तो वो साथ साथ अपलिफ्ट हो जाएंगे।
1: बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर उनकी फोटो भी देख कर पॉजिटिव विशेस भेजेंगे तो उनकी जिंदगी में बहुत सुधार होगा।
2: डेफिनेटली, पर होता क्या है ना, कई बार उस बच्चे की एंजाइटी तो है लेकिन उसमें एडेड प्रेशर हो जाता है मदर की एंजाइटी,
1: वो नहीं करना,
2: वो अपना रास्ता नेविगेट कर लेगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो पेरेंट्स की एंजाइटी है वो कांस्टेंट होती है, उसका एक इम्पैक्ट कंटिन्यूस पड़ता है, तो वो उसके लिए डबल हो जाती है।
1: बिल्कुल सही।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hi, good morning. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is मिर्ची मॉर्निंग जो कि अभी अभी शुरू हुआ है. ये वो चाय है जो गर्मा गर्म है विदाउट एक्स्ट्रा कैलोरीज. ये वो कॉफी है जो कभी ठंडी नहीं होती. और ये वो वाला ब्रेकफास्ट है जो हमेशा तुम्हारा फेवरेट है. आज का मिशन काफी सिंपल है. तुम चाय कॉफी ब्रेकफास्ट साथ में लेकर बैठो और तुम्हारे स्लीप मोड से ह्यूमन मोड में आने का सॉफ्टवेयर अपडेट मैं लेकर आई हूँ. अगर अभी फिलहाल तुम कम्यूट शुरू कर चुके हो या वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर चुके हो तो कांग्रेचुलेशंस. आज भी मैं तुम्हारे साथ में रहने वाली हूँ अगले कुछ घंटों तक. तुम्हारी लाइफ को मिर्चीदार बनाने वाली हूँ. और एक और बात, ये देसी लोग जो है ना दुनिया की किसी भी कोने में चले जाएं, एक चीज कभी नहीं बदलती है. सुबह घर से निकलते ही मम्मी का इमेजिनरी वॉइस नोट हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली चल रहा होता है. ब्रेकफास्ट किया कि नहीं किया, फोन चार्ज है कि नहीं, चार्जर कैरी किया है कि नहीं किया है, आज के सारे इम्पोर्टेंट काम कर लिए कि नहीं कर लिए, कुछ खाना है दोपहर में, भूखे पेट नहीं रहना है. ये सारी चीजें हमारे दिमाग में ऑलरेडी कंडीशन्ड होती है थैंक्स टू आवर देसी मॉम्स. और इसी देसी वॉर्म्थ के साथ बॉलीवुड की कुछ मस्ती एंड फन के साथ गुड वाइब्स के साथ अगले कुछ घंटे बीतने वाले एकदम मिर्चीदार विद सम मिर्चीदार बैंगर्स फन स्टोरीज एंड अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. ये सब मिला के बनेगा परफेक्ट रेसिपी फॉर योर ब्रेकफास्ट एंड दिस इज योर फेवरेट ब्रेकफास्ट शो मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसिला. अब फटाफट से ऑफ एयर मुझसे दोस्ती कर लो यानी कि ऑनलाइन. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. एंड नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La vieja la burka. Milchi, burka.
2: हेलो
3: हेलो बेटा नवनीत,
2: आप कौन?
3: पापा कहाँ हैं?
2: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
3: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
2: लेकिन आपको काम क्या है?
3: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
2: पापा ने कहा था?
3: चुप कर। पापा ने कहा था मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को।
2: क्या हुआ अंकल?
3: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना, मेरे जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
2: अब मुझे क्यों डांट?
3: चुप कर।
2: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
3: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा है ऐसा तूने?
2: पापा को ऐसे किस बात का बुरा लगा? मुझे ये भी नहीं,
3: पापा को किस बात का बुरा लगा इससे मेरे को क्या लेना देना है? असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
2: लेकिन बुरी क्या लगी?
3: अंकल कल देखो एक मारूंगा।
2: बदतमीजी क्या करी थी?
3: अच्छा ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
2: कह रहा हूँ मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
3: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
2: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
3: ठीक है मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
2: क्या बोलूं?
4: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
2: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
3: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स हॉट।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
10: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
11: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
12: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
14: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
15: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
14: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
15: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
14: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
16: There's nothing like the magic of live theater.
17: Celebrate Priyog Theatre Group's 50th anniversary kickoff with two memorable stage productions, The Laugh Out Loud comedy Last Over and the timeless classic Ala Afsar, Dharandhar famed Rakesh Bedi.
16: Join us on Friday, July 10th at 7 p.m. at Brook Arts Center, Bound Brook, New Jersey. Book your tickets now at PriyogTheatre.com.
18: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
19: You are listening to the MPZ Law Firm Show. Immigration woes, visa serve knows. US and Canadian immigration and nationality lawyers who speak your language.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, इट्स मिर्ची मॉर्निंग्स। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और चलो करते हैं क्विक टाइम ट्रैवलिंग जर्नी। सबसे पहले चलते हैं 1497 में। आज ही के दिन वास्को डी गामा पोर्टुगल से निकले थे इंडिया के सी राउट ढूंढने के लिए। मतलब ओरिजिनल गूगल मैप्स तो तब नहीं थे, बंदा बस निकल पड़ा था अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में। फिर 1853 में कॉमोडोर मैथ्यू पेरी जापान के टोक्यो बे पहुंचे। नहीं, ये चैंडलर नहीं है बल्कि दूसरे वाले मैथ्यू पेरी है, और उस मिशन ने जापान के डोर्स दुनिया के लिए खोल दिए। फिर 1947 में न्यू मेक्सिको के न्यूज़पेपर ने हेडलाइन छाप दी कि एक फ्लाइंग सॉसर क्रैश हुआ है। बस फिर क्या था, एलियन तब से इंटरनेट से भी ज्यादा डिस्कस टॉपिक हो चुके हैं। इसी दिन नासा ने 2011 में स्पेस शटल अटलांटिस को उसके फाइनल मिशन पर लॉन्च किया। इंडिया की तरफ देखें तो 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था। आजादी बस कुछ हफ्तों दूर ही थी यहाँ से। 1999 में कारगिल के दौरान ऑपरेशन विजय में देश ने अपने बहादुर जवानों की कुर्बानी को सल्यूट किया। हिस्ट्री हमें आज भी एक ही बात सिखाती है कि हर दिन कैलेंडर पर सिर्फ एक डेट नहीं होता, उसके पीछे कहानी भी होती है। और अब आगे की कहानी ये है कि आने वाले मिर्चीदार बैंगर्स, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647224। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई,
1: हाँ हाँ सुना,
0: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब?
0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तू चले?
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: Visit Virani Jewelers on Oak Tree Road. 0% making charges on 22 carat and diamond jewelry and 100% value on your gold trade-in. Visit ViraniJewelers.com.
0: Celebrate freedom with Mirchi. July 4th Independence Day se August 15th Independence Day tak. Sirf freedom hi freedom.
3: Only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब बात करने वाले हैं हम कल के बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर के बारे में,
2: मिर्ची वॉच इट।
1: अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट, और क्या ही कमबैक था। डिफेंडिंग चैंपियंस 2-0 से पीछे थे, मेसी का पेनल्टी भी मिस हो गया, लेकिन लास्ट 11 मिनट्स में पूरा का पूरा स्क्रिप्ट जो है वो रीराइट हो गया, यानी कि वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया। क्रिश्चियन रोमेरो, लायनल मेसी और फिर स्टॉपेज टाइम में एंजो फर्नांडिस ने गोल्स करके अर्जेंटीना को 3-2 से क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचा दिया। बॉलीवुड राइटर भी बोल रहे होंगे, यार क्या ट्विस्ट है ये, हम मिस कैसे कर गए। लेकिन मैच के बाद कंट्रोवर्सी फिर से शुरू हो गई है। इजिप्ट के कोच हसम हसन ने एलिगेशन लगाया कि ऑफिशिएटिंग और एक्सटर्नल फैक्टर्स ने अर्जेंटीना को फेवर किया है। उन्होंने डिसअलाउड गोल का भी जिक्र किया है। फॉरवर्ड मोस्तफा जीको ने भी टूर्नामेंट को फिक्स्ड बताया है। अब तक फीफा ने इन एलिगेशंस पर कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं दिया है। इन शॉर्ट ये आरोप है और इनकी इंडिपेंडेंटली पुष्टि नहीं हुई है। और आज वर्ल्ड कप का रेस्ट डे है, क्वार्टर फाइनल्स जो है वो कल से शुरू होने वाले हैं, जब फ्रांस टकराएगा मोरक्को से सुबह 9:30 बजे। तो आज के दिन स्नैक्स स्टॉक कर लो, जर्सी ढूंढ लो और कल के लिए वोकल कॉर्ड्स भी वार्म अप कर लो। अभी फटाफट से मुझे इंस्टा और एक्स पर फॉलो कर लो, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स। गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इजलन, न्यू जर्सी। कंडीशंस अप्लाई।
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है।
5: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स और अब टाइम हो चुका है वेदर और क्लॉक का. सबसे पहले गुड न्यूज है कि पिछले 24 घंटों में ऑलमोस्ट नाम मात्र की बरसात हुई थी, लेस देन 1 मिलीमीटर, और अगले 24 आवर्स के लिए फोरकास्ट है जीरो रेन. हाँ जी, अम्ब्रेलास को आज पेड लीव मिल सकती है. अभी फिलहाल टेम्परेचर की बात करें तो इस वक्त अराउंड 64 डिग्री फारेनहाइट हो रहा है. वेदर बिल्कुल फ्रेश और मोस्टली क्लियर है. दिन भर स्काईज भी क्लियर रहने वाले हैं, तो सनराइज और सनसेट तक नेचर फुल HD मोड में रहने वाला है. आज का हाई जाने वाला है 85 डिग्री फारेनहाइट तक, लेकिन ह्यूमिडिटी की वजह से इट विल फील लाइक 89 डिग्री फारेनहाइट तक. मतलब कि वेदर बोल रहा है हमसे, मैं सिर्फ वार्म नहीं बल्कि इमोशनली वार्म हुआ. और एक फन फैक्ट है, कल का हाई जो था वो 73 डिग्री फारेनहाइट था और आज का दिन उससे काफी टोस्टियर होने वाला है. इसीलिए अगर तुम ऑफिस जा रहे हो, वाटर बॉटल जरूर लेकर जाना. कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, साथ साथ में अपना SPF 50++++ भी कैरी करना. अपने चेहरे पर मल लो सनस्क्रीन अच्छे से. परफेक्ट वेदर है इवनिंग वॉक के लिए अगर तुम करते हो तो, और बैकयार्ड बारबेक्यू के लिए भी, या फिर बस गाड़ी में विंडोज डाउन करके बॉलीवुड के मिर्चीदार बैंगर्स लाके फुल वॉल्यूम पर मिर्ची सुनने के लिए भी एकदम आदर्श मौसम है. और वैसे वेदर अपडेट्स के साथ साथ आदर्श टाइम है मुझे फॉलो करने का, यानी कि प्रिसिला को. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर भी नोट कर लो, 9033 मिर्ची इज माई नंबर, दैट्स 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: With Priscilla, it's hot.
1: Good morning, guys. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings. और अब time हो गया है. Mirchi Hour का 3. सबसे पहले US President Donald Trump ने कहा है कि जून में अनाउंस हुआ ईरान सीज फायर अब खत्म हो चुका है. इसके बाद US ने ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक्स लॉन्च किए हैं, जबकि ईरान ने कहा है कि कई जगहों पर एक्सप्लोजन्स हुए हैं और लोग घायल हुए हैं. सिचुएशन अभी भी फास्ट मूविंग है और दुनिया की नजर उस रीजन पर बनी हुई है. नंबर टू पर सीरिया की कैपिटल डमास्कस में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के होटल के पास दो एक्सप्लोजन्स हुए हैं. रिपोर्ट्स के हिसाब से वो उस वक्त होटल में नहीं थे बल्कि सीरियन प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग में थे. अथॉरिटीज सिचुएशन को मॉनिटर कर रही हैं. एंड फाइनली स्पोर्ट्स से नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में हिस्ट्री क्रिएट कर दी है. कैनेडियन प्लेयर फेलिक्स ओजे अलियासिम को 5 hours and 15 minutes के मैराथन क्वार्टर फाइनल में हरा दिया है. मैच इतना लंबा था कि लोग नेटफ्लिक्स की तरह पूछ रहे थे, आर यू स्टिल वॉचिंग. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 विद मी प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033 647244. स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi.
1: Buscaba la buscabana, sacabana. ¡Cámbala! ¡Burga, burga! ¡La virpa la burga!
0: ¡Mirchi, burga!
2: ¿Aló?
3: ¿Aló?
2: हेलो
3: हाँ
2: बोलो कौन
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोल कौन रहा है
3: बोल कौन रहे हो कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
2: बोल कौन रहे हो
3: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोला था
3: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
2: हाँ बोलो
3: ओए यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सर ओए यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर
2: कब आया था कब घुसा अंदर
3: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
2: तो कहाँ करा है कमी हो गया है
3: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
2: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
3: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
2: मेरी सीवर में घुसा है किसी और के सीवर में घुस गया
3: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
2: सीवर में मरा रहा है तू
3: गाली तो मत दो
2: हेलो
3: हेलो
2: फिर फोन कर दिया तूने
3: अच्छा सीवर साफ हो जाएगा काम करो एक चीज बोलो
2: क्या बोलो
3: कुकड़ुकू
4: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका बन गया
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: गोल्ड प्राइसेस आर राइजिंग इन्वेस्ट इन प्योर गोल्ड बार्स विद राज जूल्स
6: वी हैव अ रेडी स्टॉक एट राज जूल्स बाय गोल्ड बार्स नाउ एट राज जूल्स
7: डिड यू सी माय न्यू काउच वी पिक्ड इट अप फ्रॉम इनकांटो इन इटली एंड दैट डाइनिंग टेबल इट्स फ्रॉम कैटलन इटालिया
8: ये मिसेस चोपड़ा ना कीप शोइंग ऑफ हर फर्नीचर जस्ट बिकॉज़ हर हस्बैंड्स बिजनेस पिक्ड अप रिसेंटली व्हेन डिड शी विजिट इटली चोपड़ा साहब सो हाउ वाज इटली
9: ओह ऑल द स्टाइलिश फर्नीचर इज फ्रॉम इटाल मोड फर्नीचर ऑन 685 न्यू जर्सी 17 साउथ इन परामस न्यू जर्सी दे कैरी स्टाइलिश प्रीमियम इटालियन ब्रांड लाइक एस्टरो मिलानो पियत्रो कॉन्स्टेंटिनी एंड मच मोर
8: व्हाट इटाल मोड फर्नीचर इन परामस अजी सुनते हो तो अभी चलो इटाल मोड फर्नीचर पे अगली पार्टी हमारे घर पे
10: Italmod Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodfurniture.com and have it delivered anywhere in the U.S.
11: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
12: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
13: Listener mein back to back gana sunega. Back to back gana sunega.
0: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot. Yes.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और अपना कैलेंडर रेडी रखो क्योंकि फीफा का नौका ड्रामा अब और इंटेंस होने वाला है। थर्सडे 9th ऑफ जुलाई का मैच फ्रांस वर्सेस मोरक्को 4 PM को देख सकते हो। फ्राइडे 10th ऑफ जुलाई को क्वार्टर फाइनल्स किक ऑफ होने वाले हैं। स्पेन वर्सेज बेल्जियम यू कैन वॉच एट 3 PM। सैटरडे 11th ऑफ जुलाई डबल धमाका होने वाला है, नॉर्वे वर्सेज इंग्लैंड इज एट 5 PM। और फिर डिफेंडिंग चैंपियंस अर्जेंटीना वर्सेज स्विट्जरलैंड एट 8 PM। सैटरडे नाइट के प्लान्स तो ऑफिशियली सॉर्टेड हो चुके हैं। उसके बाद ट्यूजडे एंड वेडनेसडे दोनों दिन 3 बजे शाम को सेमीफाइनल्स होने वाले हैं। और फिर जिस मैच का पूरी दुनिया को इंतजार है, द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल संडे 19th of July 3 PM ऑनवर्ड्स होने वाला है, राइट हियर इन न्यू जर्सी एट मेटलाइफ स्टेडियम। मतलब फुटबॉल का बिगेस्ट पार्टी लिटरली हमारे बैकयार्ड में होने वाला है। और जब फुटबॉल फीवर इतना आए हो तो आउटफिट भी तो मैच विनिंग होनी चाहिए ना। अगर तुम्हें कुछ ऐसे फेस्टिव आउटफिट्स चाहिए तो न्यू जर्सी फ्रंटियर रास का USA फ्लैगशिप स्टोर अब ऑफिशियली ओपन हो चुका है एट 1655 ओक ट्री रोड एडिसन। चाहे एलिगेंट हैंडलूम साड़ीज चाहिए तुम्हें, ब्राइडल कुटोर चाहिए, स्टाइलिश मेन्स वेयर चाहिए, या फिर रेडी टू वेयर आउटफिट्स चाहिए, 70 ईयर्स की इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप अब बिल्कुल तुम्हारे नेबरहुड में अवेलेबल है। मैच देखो, शॉपिंग करो, वीकेंड सक्सेसफुली प्लान करो। और अभी ऑफ एयर टीम बनाते हैं मैं और तुम एट मिर्ची प्रेस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई,
1: हाँ हाँ सुना,
0: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब?
0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तो चले?
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: विजिट विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन योर गोल्ड ट्रेड इन। विजिट viraniijewelers.com।
0: सेलिब्रेट फ्रीडम विद मिर्ची, जुलाई 4th इंडिपेंडेंस डे से अगस्त 15th इंडिपेंडेंस डे तक, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
3: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
5: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: Tera kya hoga, Kalia?
9: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
8: Ab, mirchi kha.
10: Radio Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो माय बर्थडे स्टार, अगर आज 8 ऑफ जुलाई को तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है ना, तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू, जादू की झप्पी एंड पप्पी। आज के दिन ऑफिशियली तुम्हारे नाम है और मेरा नाम है प्रिसिला। सुन रहे हो तो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। और अगर आज कोई तुमसे पूछे कि कितने साल के हो चुके हो, ये बताने की जगह स्माइल करके कहना कि आज मेरे साथ कौन से सेलिब्रिटीज हैं जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले यू शेयर योर बर्थडे विथ द वन एंड द ओनली केविन बेकन। ये फुटलूज वाले डांसिंग लेजेंड है एंड ही इज अ वेरी गुड एक्टर। एंड साथ में टीवी लवर्स के फेवरेट मिलो वेंटिमेलिया, वो भी आज के दिन इस धरती पर आए थे। इन्हें तुमने गिलमोर गर्ल्स और दिस इज अस में देखा होगा। और अगर तुम स्ट्रेंजर थिंग्स के फैन हो तो माया हॉक का भी आज ही हैप्पी बर्थडे आता है। साथ साथ में सोफिया बुश भी आज ही के दिन इस धरती पर प्रकट हुई थी। एंड म्यूजिक लवर्स के लिए बेक एंड जोन ऑस्बर्न भी आज ही के दिन अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। एंड सेलिब्रिटी शेफ वुल्फगैंग पक भी आज ही के दिन यहाँ पर आए थे। तो अगर तुम भी कैंडल्स ब्लो करते हो आज के दिन या किसी और को बर्थडे विश करना चाहते हो, मुझे अपने शाउट आउट भेज सकते हो, मेरी तरफ से एक बड़ा सा हग ले सकते हो, दे सकते हो और ढेर सारी गुड विशेस। मे दिस ईयर ब्रिंग यू हेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस एंड ढेर सारी खुशियां एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ मिर्ची वाइब्स। और बर्थडे सेल्फीज और इनवाइट्स भेजो मुझे इंस्टाग्राम और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
4: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
5: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
6: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
9: There's nothing like the magic of live theater.
10: Celebrate Priyog Theatre Group's 50th anniversary kickoff with two memorable stage productions, The Laugh Out Loud comedy Last Over and the timeless classic Ala Afsar, Dharandhar famed Rakesh Bedi.
11: Join us on Friday, July 10th at 7 p.m. at Brook Arts Center, Bound Brook, New Jersey. Book your tickets now at PrayogTheatre.com.

0: With Priscilla, it's hot.
1: Good morning, मैं हूँ Priscilla और time आ चुका है मिर्ची mornings पर. सबसे पहले यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने एक पंजाब पुलिस ऑफिसर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अलेजेडली लॉस एंजलिस में रहने वाले एक परिवार से इंडिया में उनके रिलेटिव्स पर झूठे मर्डर चार्जेस लगाने का डर दिखाकर $400,000 एक्सटॉर्ट किए हैं। प्रोसिक्यूटर्स ने यह भी कहा है कि वो उनकी एक्सट्रेडिशन सीक कर रहे हैं। ये एलिगेशन है और लीगल प्रोसेस अभी फिलहाल जारी है। एंड नंबर टू पर, जकार्ता में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांटो के साथ ट्रेडिशनल बैम्बू इंस्ट्रूमेंट आंकलुंग बजाया और उस पर बज गया बॉलीवुड का एवरग्रीन क्लासिक फ्रॉम द मूवी कुछ कुछ होता है। एंड फाइनली स्पोर्ट्स से, क्रिकेट फैंस ये स्कोर कोड थोड़ा सा दर्द दे सकता है। इंग्लैंड ने तीसरे T20 में इंडिया को 125 रन से हरा दिया है। इंडिया 76 पर ऑल आउट हो गई, जो T20 इंटरनेशनल हिस्ट्री में उनकी सबसे बड़ी डिफीट बाय रन बन गई है। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 विद मी Priscilla। सुनते रहो मुझे और जाकर मुझे फॉलो भी करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga.
1: La vieva la burga. Milci, burga. Hello.
2: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
1: हाँ जी बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
1: तो हुआ कैसे है, मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
2: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको।
1: कितने का ड्राफ्ट है मेरा?
2: 7,500 रुपए का।
1: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
2: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
1: किस चीज की फीस?
2: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
1: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
2: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
1: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
2: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है। आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं। उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं। 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है। और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
1: ये भी तुम ही देख लो, ये तुम फोन क्यों कर रहा हो?
2: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
1: भाई। आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, ये बीक में रख लो हमें ज्यादा।
2: अरे यार,
1: आप लूट रहे हो पब्लिक को यार।
2: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो काम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी,
1: अरे अभी अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है, जो नाम लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
2: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
1: तुमने आम इंसान तुमने बनाया ठीक है ना।
2: हाँ?
1: भैया पैसे भाड़ में गए।
2: आप मेरी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन में लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए संदीप।
1: हाँ बोलो बोलो
3: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
8: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरु।
9: ఓక్ ట్రీ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూసివ్ డైమండ్ స్టోర్.
10: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటేర్స్ నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.
11: గులాబీ సాడీ అని లాలి లాలలా, దిసతే మే భారీ రాజా ఫోటో మజాకా.
12: టీ సిరీస్ ప్రెజెంట్ ద మాల్ 4.
13: గులాడి బినా చట్నీ కైసే బని.
12: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
14: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
15: Tera kya hoga, Kalya?
16: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
15: अब मिर्ची खा।
17: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
18: मिर्ची फ्रेश माल।
19: जब हर बीट में हो तड़का, तब बनती है चटनी।

0: आज दी है नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने, म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नीलकमल सिंह ने, और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला और तुम्हारे साथ हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स पर। अब मेरे साथ में है मिर्ची राशि जोन पार्ट पहला।
3: मिर्ची राशि जोन।
2: एरीज यानी मेष राशि, गलती हो जाए कोई बात नहीं, कवर अप से बेटर है ओन अप करना। कॉन्फिडेंस वही होता है जो मिस्टेक के बाद भी स्माइल करके अपनी गलती मान सके। लकी कलर फॉर यू इज चेरी, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी वृषभ राशि, क्रिएटिव मोड ऑन कर लो, ऑफिस प्रेजेंटेशन हो या फिर घर का पैशन प्रोजेक्ट हो, अपना मास्टरपीस खुद ही बनाना है तुम्हें। डस्टिंग कल भी हो सकती है। लकी कलर फॉर यू इज एमरल्ड, लकी नंबर इज 31। जेमिनी यानी मिथुन राशि, आज किसी अपने से बात करते टाइम ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, शायद उन्हें एडवाइस नहीं बल्कि तुम्हारी लिसनिंग स्किल्स चाहिए। और हाँ, बिना इंटरप्ट किए सुनना ये भी एक टैलेंट होता है। लकी कलर फॉर यू इज ब्लू, लकी नंबर इज 9। कैंसर यानी कर्क राशि, फ्रेंड्स के साथ मस्ती का मूड है लेकिन बैटरी भी फोन की तरह होती है, कभी कभी ओवर यूज करते हो तो लो पावर मोड में आ जाते हो, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। लकी कलर फॉर यू इज कोरल, लकी नंबर इज 22। लियो यानी कि सिंह राशि, ऑनलाइन कार्ट को थोड़ा सा रेस्ट दे दो आज के दिन, हर शाइनी चीज एड टू कार्ट नहीं होती है, फ्यूचर वाला बैंक अकाउंट तुम्हें थैंक क्यों बोलेगा। लकी कलर इज गोल्डन येलो, लकी नंबर इज 5। वर्गो यानी कन्या राशि, आज सिर्फ सुनने का दिन है, जजमेंट मत दो, हर इंसान की स्टोरी अलग होती है और कभी कभी एम्पैथी ही बेस्ट सुपर पावर होता है। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 18। एंड दैट्स योर राशि जोन पार्ट 1 विद मी प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। पार्ट 2 का इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा, तब तक तुम्हें मिर्चीदार बैंगर्स सुनाती हूँ मैं। इन अ व्हाइल आई विल बी बैक, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज एम CHIPRIS। WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, that's 9033 6472 4। Stay tuned and stay hot.

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई,
1: हाँ हाँ सुना,
0: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब?
0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तू चले?
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: Visit Virani Jewelers on Oak Tree Road. 0% making charges on 22 carat and diamond jewelry and 100% value on your gold trade-in. Visit ViraniJewelers.com.
0: Celebrate freedom with Mirchi. July 4th Independence Day se August 15th Independence Day tak. Sirf freedom hi freedom.
3: Only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स। गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लन, न्यू जर्सी। कंडीशंस अप्लाई।
8: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: Wow! Yahi to hai mera dream lehenga!
12: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
11: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
12: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
11: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Hislin.
13: You are listening to the MPZ Law Firm Show. Immigration woes, visa serve knows. US and Canadian immigration and nationality lawyers who speak your language.
7: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
14: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
15: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
14: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
16: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
14: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
17: एक ही होता है।
14: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो जी, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, और टाइम हो चुका है मिर्ची पर राशियों की बात करने का।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लीब्रा यानी तुला राशि चैलेंज आ रहा है, एंड गेस व्हाट, तुम उसके लिए रेडी भी हो। अपना खुद का लेवल अपग्रेड करने का टाइम आ चुका है। लकी कलर इज रॉयल ब्लू, लकी नंबर इज 27। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, सब लोग तुम्हारी तरह नहीं सोचते हैं, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। अग्री टू डिसअग्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है जिसे सीखना जरूरी है, और अपना दिल जो है उसे हल्का रखो। लकी कलर फॉर यू इज मरून, लकी नंबर इज 11। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, ऑफिस का प्लान तुम्हारे हिसाब से ना चले तो कोई टेंशन नहीं, कभी कभी डिटूर्स ही बेस्ट डेस्टिनेशंस तक ले जाते हैं। लकी कलर फॉर यू इज स्टील, लकी नंबर इज 6। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आज इमोशंस थोड़े से लाउडर हो सकते हैं। सब प्रॉब्लम सॉल्व करना तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, थोड़ा सेल्फ केयर भी कर लो यार, बॉस मोड में आ जाओ। लकी कलर इज स्लेट कलर एंड लकी नंबर इज 8। That rhymed. Aquarius यानी कुंभ राशि, आइडियाज की बारिश हो रही है, लेकिन आज सिर्फ एक आइडिया चूज करो जो फ्यूचर में वॉलेट को भी स्माइल करने पर मजबूर करेगा। लकी कलर फॉर यू इज एम्बर, लकी नंबर इज 42। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पाइसीज यानी मीन राशि, रिस्पेक्ट फ्री होता है और रिटर्न्स प्राइसलेस होते हैं। आज काइंडनेस में इन्वेस्ट करो, यूनिवर्स कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ तुम्हें रिटर्न करने वाला है। लकी कलर इज ऑफ व्हाइट, लकी नंबर

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
4: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
5: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
6: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: Listener MI, back to back gana sunega.
12: Back to back gana sunega.
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: और इसी के साथ मिर्ची मॉर्निंग्स का रैप अप का टाइम आ चुका है। मेरा नाम है प्रिसिला और जाने से पहले तुम्हें एक फिल्मी कहानी सुनाकर जाती हूँ। कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। पूजा भट्ट यानी कि आलिया भट्ट की स्टेप ओल्डर सिस्टर, उन्होंने रिसेंटली शेयर किया कि उन्हें ब्लॉकबस्टर आशिकी ऑफर हुई थी। प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट और उनके चाचू साइनिंग अमाउंट लेकर उनके घर तक भी पहुंच गए थे, लेकिन पूजा ने फिल्म रिजेक्ट कर दी। क्यों? क्योंकि उस वक्त उन्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देना ज्यादा जरूरी लग रहा था। उन्होंने मजाक में याद भी किया कि उसके बाद मुकेश भट्ट ने महेश भट्ट को फोन करके कहा, योर डॉटर इज गॉन क्रेजी। एंड कभी कभी ना लाइफ में जो डिसीजन उस वक्त बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं, बाद में जाकर हमें रियलाइज होता है कि ये या तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बन गए या हमारी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक बन गए हम। इसीलिए लाइफ को रिवाइंड नहीं करना चाहिए, बस हर चैप्टर से कुछ ना कुछ सीखते हुए चलते जाना चाहिए। और स्पेशली अगर करियर की बात हो, अपना नेक्स्ट चैप्टर लिखने का मूड हो तुम्हारा, तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और सिर्फ एक महीने की ट्रेनिंग के बाद तुम फ्लेबोटमी टेक्नीशियन बन सकते हो थ्रू एम्स एडुकेशन। प्रोग्राम जो है वो फुली ऑनलाइन भी है और ऑन कैंपस भी है। तो अगर करियर स्विच करना है या करियर बूस्ट का प्लान है तुम्हारा, तो कॉल करो 9082220002 पर। आई विल रिपीट, 9082220002 इज द नंबर फॉर एम्स एडुकेशन, या फिर उनकी वेबसाइट विजिट करो aimseducation.edu, दैट्स aimseducation.edu। और हो सकता है कि तुम्हारा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो बस एक फोन कॉल दूर हो। हां दोस्त, इसी के साथ मेरे जाने का टाइम हो चुका है अभी तुमसे दूर। आऊंगी तुम्हारे पास कल सुबह सेम टाइम सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम शो लेकर विद सेम मिर्ची वाइब्स। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर मॉर्निंग्स, योर ड्राइव और योर चाय ब्रेक, या कभी कभी तुम्हारी ट्रैफिक थेरेपी भी मैंने अगर की हो तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए शुक्रिया, मेहरबानी। और फिर भी हमारी दोस्ती पक्की हो सकती है। फॉलो मी इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: not you with me.
1: Midday Mohabbat, Midday Mohabbat.
2: 2 rupees में पैकेट भर के चिप्स खाना याद है आपको?
3: सारा जमाना सारा का दीवाना.
4: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
5: Hi, this is me, Sara. Aapki 90s ki yaadon ka pitara. And now you tune in with me on Mirchi. Aur hua yun ki conversation se 2 rupees ka wo chips ka packet yaad aa gaya jo ye jo 5-5, 10-10, 20-20 rupees ke hawa wale chips wale packets jo hai unke launch se pehle market mein aaya karta tha, jise hum wafers kaha karte the. Simple taur tareeke se ki yaar aloo hai, फ्राइड आलू और उसपे नमक लगा हुआ है और वाह क्या स्वाद हुआ करता था यार उसका. इनफैक्ट स्वाद क्या उसकी तो क्वांटिटी भी बड़ी जबरदस्त हुआ करती थी. एंड देन आई रियलाइज्ड, मैंने कहा यार ये एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में हम कैसे इधर से उधर हो गए, नहीं वक्त नहीं लगा हमें पलटी खाते हुए. अब पता है ये वही चिप्स हैं जो कि कभी कहीं बर्थडे पार्टी में मिल जाया करते थे ना, तो मैं केक के साथ वेफर्स को कॉम्बिनेशन बनाकर और फिर खाया करती थी. हमेशा से ही मेरा ये मामला सेट रहा है और ये मेरी बचपन की आदत है यार, केक और वेफर से लेकर आज तक. अगर मामला बहुत मीठा हो जाता है ना तो कुछ नमकीन तो चाहिए ही होता है. लेकिन अभी यादों को मीठा नमकीन करने की बारी आ चुकी है. मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए मैं आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
2: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: नो
5: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
7: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन.
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
9: अब मिर्ची खा.
11: Radio Mirchi, it's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बागबान की सक्सेस के बाद द ट्रियो ऑफ अमित जी, हेमा जी एंड सलमान खान वॉज अगेन सीन इन द फिल्म बाबुल.
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And you know what? बाबुल बनाने से पहले रवि चोपड़ा के दिमाग में था कि वो अमित जी और सलमान खान को लेकर एक पीरियड ड्रामा बनाएंगे, प्री इंडिपेंडेंस एरा ऑफ इंडिया पर बेस्ड. बट इवेंचुअली उन्होंने बनाई बाबुल, विच आई थिंक वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल टॉपिक जो उन्होंने छुआ था. क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ उन्होंने अपनी मूवी में ही नहीं छुआ, इस टॉपिक ने काफी सारे दिलों को भी छुआ. द स्टोरी ऑफ अ डॉटर इन लॉ एंड अ फादर इन लॉ, जहाँ पे फादर इन लॉ गेट्स हर डॉटर इन लॉ मैरिड. एंड खैर, हम तो छोटे थे उस टाइम पर, हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि एज अ सोसाइटी हमने कितने चेंजेस देखे. लेकिन हाँ, एक बात तो है कि हमारी जो हिंदी फिल्में है ना, वो हमारी सोसाइटी का आईना जरूर होती है, और कहीं ना कहीं ये एक चेंज जरूर लेकर आती है. एंड उस टाइम पर ऐसे टॉपिक का छिड़ना वॉज अ बिग डील फॉर श्योर. एंड आई एम सो ग्लैड कि रवि चोपड़ा ने प्री इंडिपेंडेंस एरा ऑफ इंडिया को ना लेकर इंडिपेंडेंट और मॉडर्न इंडिया के माइंड सेट को चेंज करने का थॉट लिया. बट पता है क्या, उनका पहला थॉट रानी मुखर्जी नहीं थी इस फिल्म के लिए. सबसे पहले तो बी.आर. चोपड़ा चाहते थे कि सुष्मिता ये फिल्म करे, लेकिन सुष्मिता के पास डेट नहीं थी, तो फिर ये फिल्म काजोल के पास गई, फिर तबू के पास गई, एंड देन इवेंचुअली रानी मुखर्जी के पास गई. एंड वेरी इंटरेस्टिंगली, इस फिल्म का जो वार्डरोब है वो मनीष मल्होत्रा ने नहीं किया. अब ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का 36 का आंकड़ा था. द ओनली रीजन वॉज कि मनीष मल्होत्रा ऑलरेडी रानी के लिए कभी अलविदा ना कहना की वार्डरोब कर चुके थे, और उन्हें अपने वार्डरोब में कुछ नयापन चाहिए था, जिसकी वजह से शी आस्क्ड द मेकर्स टू रोप इन सब्यसाची मुखर्जी. एंड आई रियली लाइक रानी मुखर्जी की साड़ी वाला वो लुक, जिसमें कि उन्होंने फुल स्लीव्स की ब्लाउजेस का ट्रेंड शुरू किया था यार. कमिंग अप मोर ऑन दिस फिल्म, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई।
1: हाँ हाँ सुना।
0: जून भी आ गया। जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब
0: विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तो चले,
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: विजिट विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन योर गोल्ड ट्रेड इन। विजिट viraniijewelers.com।
0: सेलिब्रेट फ्रीडम विथ मिर्ची, July 4th इंडिपेंडेंस डे से August 15th इंडिपेंडेंस डे तक, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम।
3: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Gulabi saadi ani lali lal lal. Disate me bhari raja photo maza ka.
7: T-Series present Dhamaal 4.
8: Gulabi bina chatni kaise bani.
7: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
12: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
11: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
13: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक।
14: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
5: I enjoy using inefficient and complex software, मामा।
6: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
3: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One। Get your free trial at zoho.com/one।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब बाबुल शूट हो रही थी ना, at that time सलमान खान और जॉन इब्राहिम के बीच में दंगल चल रहा था.
0: Mirchi. Chat room.
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड हुआ यूं कि इन दोनों का कोई इंटरनेशनल डांस टूर चल रहा था, जहां पर सलमान खान और जॉन इब्राहिम के बीच में कुछ तो भी बात हुई और डिफरेंसेस क्रिएट हुए. अब यही डिफरेंसेस सेट पर भी आ गए जब ये फिल्म शूट होनी थी, जिसकी वजह से इस फिल्म की जो स्केड्यूल है वो काफी सारे डिलेज देख चुका था. बट थैंक गॉड इवेंचुअली ये फिल्म का रैप अप हुआ, फिल्म पूरी बनी और रिलीज भी हो गई. बट वेरी इंटरेस्टिंगली आई शुड ऑल्सो लेट यू नो कि हेमा मालिनी भी बाबुल नाम की एक फिल्म को डायरेक्ट करना चाह रही थी, वेर इन शी वॉन्टेड टू रोप इन रेखा, ईशा देओल एंड अभिषेक बच्चन. और इस फिल्म में वो मदर एंड डॉटर का रिलेशनशिप बताना चाह रही थी. और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि ये फिल्म वॉज बेस्ड ऑन क्लासिकल म्यूजिक. अब मैं ये सोच रही हूँ कि जो बाबुल रवि चोपड़ा ने बनाई वो ज्यादा अच्छी थी, या फिर हेमा जी का ये जो आइडिया था जो कभी आगे नहीं बढ़ पाया वो ज्यादा अच्छा होता. Well, अगर फिल्म रिलीज होती तो ही हमें पता लगता. बट आई स्वेयर हाँ, आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा. स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Basta, what is that?
2: नब्बे की गप्पे।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। Well, there used to be a time जब vocabulary भी छोटी होती थी और type of bags की choice भी। क्या आपने कभी बैग को बस्ता बोला है? देखो यार, हमें तो कॉन्वेंट स्कूल में एडमिट करवाया गया था, तो आई कुडंट यूज दिस वर्ड, लेकिन मेरे घर के काफी सारे बड़े यूज टू यूज दिस वर्ड। इनफैक्ट हमारे ऑटो वाले जो भैया थे वो भी बैग को बस्ता ही कहा करते थे, और मेरी ट्यूशन टीचर वो भी हमारे बैग को बस्ता कहा करती थी कि बेटा बस्ता ले लिया, बेटा बस्ते में अपनी बुक्स और पेंसिल्स रख ली। लेकिन ये जो बस्ता था ना, ये बस्ता ही लगता था यार, रेक्टेंगुलर शेप बैग जिसके दो बकल्स होते थे या वो मेटल वाले बटन्स, सबसे बाहर दो पॉकेट्स होती थी, देन अंदर किताबें रखने की जगह, एंड दैट्स इट। नो टू मेनी जिप्स एंड पॉकेट्स टू कंफ्यूज अस, जिससे कि हम कभी अपने रबर और पेंसिल ढूंढते ढूंढते पगलाए नहीं, अंटिल वी हैड अ रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैग्स टू चूज फ्रॉम, अ स्लिंग बैग, अ टोट बैग, अ शोल्डर बैग एंड व्हाट नॉट। एंड यू नो व्हाट, इन सब में हम लड़कियों को काफी मेहनत के बाद एक रबर बैंड या एक छोटी सी लिपस्टिक मिल पाती है। Doesn't matter how big or small the bag is, लेकिन सामान ढूंढना हमेशा ही मुश्किल होता है। लेकिन आपको पता है, ये जो बस्ता था ना, ये लड़के का हो या लड़की का हो, एक चीज इनमें कॉमन जरूर हुआ करती थी, और वो थी टिफिन से बहते हुए सब्जी और अचार के तेल के दाग, जिसकी स्मेल मैं आज भी बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। You tune in with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi, it's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155. सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
4: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इसलिन.
5: ఓక్ ట్రీ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూజివ్ డైమండ్ స్టోర్.
6: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటేర్స్, నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.
7: There's nothing like the magic of live theater.
8: Celebrate Priyog Theatre Group's 50th anniversary kickoff with two memorable stage productions, The Laugh Out Loud Comedy Last Over and the timeless classic Ala Afsar, Dharandhar famed Rakesh Bedi.
7: Join us on Friday, July 10th at 7 PM at Brook Arts Center, Bound Brook, New Jersey. Book your tickets now at PrayogTheatre.com.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear तकियों की दीवारों से बने घर,
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज पता है, खुद का घर बनाने की एक अलग ही जंग लड़ रहा है जमाना। वो जमाना जो कभी तुम से एक घर बनाकर खुश था। तुम्हारी दीवारें ईंट पत्थर की और खून पसीने की नहीं थी, पर सुकून और वार्म्थ की जरूर थी। उनमें लाइट नहीं थी, लेकिन वो हमारी मुस्कान से जगमगाता था। साउंड सिस्टम नहीं था, लेकिन हमारी हंसी से खिलखिलाता था। हमारी इमेजिनेशन कितनी गजब थी यार, कि तुम्हें बनाकर हम सोचा करते थे कि हमने फेरी टेल से निकला कोई बड़ा सा कासल बना दिया। और आज इंटीरियर डिजाइनिंग की मैगजीन से इंस्पायर्ड घर भी सेट कर देना तो भी तसल्ली नहीं होती कि नहीं नहीं नहीं यार, परफेक्ट नहीं है। अच्छा है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। कितने संतुष्ट थे ना हम, तुम्हें बनाते, कहानियां बनाते और खुश रहते। यू नो, तकियों की दीवारों वाले घर, तुमने हमें एक बात नहीं बताई, और अगर बोल पाते ना तो जरूर बताते कि घर परफेक्ट नहीं, थोड़ा तहस नहस ही अच्छा लगता है। घर वही घर लगता है जहाँ थोड़ी कमी हो, तभी तो थोड़ा है थोड़े की जरूरत है बिकम्स अ परफेक्ट फैमिली सॉन्ग। नहीं क्या, तुम्हारी यादों में सुकून पाती तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई।
1: हाँ हाँ सुना।
0: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब?
0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तो चले?
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: Visit Virani Jewelers on Oak Tree Road. 0% making charges on 22 carat and diamond jewelry and 100% value on your gold trade-in. Visit ViraniJewelers.com.
0: Celebrate freedom with Mirchi. July 4th Independence Day se August 15th Independence Day tak. Sirf freedom hi freedom.
3: Only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington.
8: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.
10: You are listening to the MPZ Law Firm Show. Immigration woes, visa serve knows. US and Canadian immigration and nationality lawyers who speak your language.
11: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक।
12: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
13: गुलाबी साड़ी अनी लाली लाल लाल।
14: T-Series present The Mall 4. Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
15: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
16: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
15: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
0: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: प्रसून जोशी ने जो लिख दिया सो लिख दिया, नरेश अय्यर ने जो गा दिया सो गा दिया, और रहमान सर ने जो म्यूजिक बना दिया सो बना दिया, और यूं आया कैसेट के साइड बी का चौथा गाना।
0: मिर्ची 90s कैसेट।
1: इस गाने ने सिर्फ फिल्म ही नहीं, हम में भी एज यंग भारत जान डाल दी थी। इस गाने को सुनकर ना आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड आई फील कि जब कभी आपको ये लगे ना कि आप सिचुएशन से हार रहे हो एंड इट्स टाइम टू गिव अप, इस गाने को सुनना, असर होगा, क्योंकि इस गाने की ये लाइंस बड़ी इन्फ्लुएंशियल लगती है मुझे।

एंड यस, जब तक अपने अंदर के अंधेरे में झांक कर ये नहीं बोलेंगे ना, तो रोशनी कहाँ से आएगी। जब ये गाना हम मिलेनियल किड्स को तब जोश से भर सकता था जब हम अपनी जिंदगी की शुरुआत ही कर रहे थे, तो आज क्यों नहीं। बदला कुछ नहीं है बॉस, बस अब हमें खुद को मुझसे नहीं होगा बोलने की आदत हो गई है। लेकिन ये भी जान लो, ऐसी आदतों से जितनी जल्दी निजात पाएंगे ना, उतना ही जल्दी आगे जा पाएंगे। एंड नाउ विद दिस इट्स टाइम फॉर मी टू से कि हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। यहाँ के अलावा आप मुझे ढूंढ सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. With Charu. Only on Mirchi.
2: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है,
2: मुझे कुछ कहना है,

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

ये कपूर खानदान की बहू हैं, ऋषि कपूर की वाइफ हैं, रणबीर कपूर की मम्मा हैं, आलिया भट्ट की सास हैं, राहा कपूर की दादी हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जी मैं बात कर रही हूँ नीतू सिंह की। उनके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन हमको पता है, वो शायद इसीलिए क्योंकि जब वो अपने करियर की पीक पे थी उन्होंने शादी कर ली और कपूर खानदान की बहू बन गई, अपना फिल्मी करियर छोड़ दिया। वैसे इनका असली नाम है हरनीत कौर। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट जब फिल्मों में काम करना शुरू किया तो बेबी सोनिया सिंह नाम से किया, उसके बाद बड़ी होकर जब फिल्में करने लगी तो नीतू सिंह के नाम से। आज इन्हीं के बारे में करेंगे बातें, ऑफ कोर्स इनके गाने भी सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
3: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: Oh no!
6: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
10: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
9: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची खा।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

भाई नीतू सिंह बेसिकली दिल्ली की हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। उनका जन्म दिल्ली में हुआ था, लेकिन जब वो 5 साल की थी उनके पेरेंट्स दिल्ली से बॉम्बे आ गए थे। उनकी मदर राजी सिंह वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी और उन्होंने काफी कोशिश भी की, फिल्मों में कुछ कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम भी किया और साथ ही साथ अपनी बेटी के लिए भी एज अ चाइल्ड एक्टर उन्होंने फिल्मों में काम ढूंढना शुरू कर दिया। इसी बीच जब नीतू सिंह जी के फादर की डेथ हो गई तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए नीतू सिंह की मम्मा ने और एक्टिवली उनके लिए काम ढूंढना शुरू कर दिया। एज अ चाइल्ड एक्टर नीतू सिंह ने काफी फिल्मों में काम किया है, करेंगे उसके बारे में भी बात थोड़ी देर के बाद। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
2: अच्छा है।
1: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई,
2: हाँ हाँ सुना,
1: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
2: मतलब
1: विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
2: तू चले?
1: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
2: और कुछ?
1: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
2: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
1: जनवरी में ही बताया था।
3: विजिट विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन योर गोल्ड ट्रेड इन। विजिट viraniijewelers.com।
1: सेलिब्रेट फ्रीडम विद मिर्ची, जुलाई 4th इंडिपेंडेंस डे से अगस्त 15th इंडिपेंडेंस डे तक, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम।
4: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
9: Inefficient,
10: very complex,
11: clumsy और
12: confusion ही confusion.
8: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
13: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
14: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
15: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए Lion Mortgage. The king of mortgage industry.
16: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
17: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
18: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
19: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
18: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
18: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
10: एक ही होता है।
18: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

भाई नीतू सिंह जब 7-8 साल की थी उनको वैजयंती माला जी ने नोटिस किया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वैजयंती माला जी का एक डांस स्कूल था जिसमें नीतू सिंह एज अ चाइल्ड जाती थी। उन दिनों वैजयंती माला जी की एक फिल्म के लिए चाइल्ड एक्टर को ढूंढा जा रहा था। ये फिल्म थी 1966 की सूरज, जिसमें वो गाना है ना, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, वो वाली फिल्म। तो इस रोल के लिए नीतू सिंह को, जो तब बेबी सोनिया थी, साइन कर लिया गया। फिर लेट 60s में काफी फिल्मों में इन्होंने एज चाइल्ड एक्टर काम किया। 10 लाख, 2 दूनी 4, वारिस, घर घर की कहानी, पवित्र पापी एंड सबसे पॉपुलर, सबसे प्यारा रोल इनका दो कलियां फिल्म में, जहां पे इन्होंने दो जुड़वा बहनों का रोल किया था। इतनी अडोरेबल है ना नीतू सिंह उसमें, इतनी अडोरेबल, सदके वारी जाऊं। मतलब वो फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है इन्हीं की वजह से। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजिलिन।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

नीतू सिंह जब सिर्फ 8 साल की थी तब उनकी पहली फिल्म आई थी एज अ चाइल्ड एक्टर। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जी बॉम्बे में वो वैजयंती माला जी के डांसिंग स्कूल में थी जहाँ पे वैजयंती माला जी ने उनको नोटिस किया और वो 1966 की फिल्म सूरज में कास्ट हुई। उसके बाद काफी फिल्में की इन्होंने एज अ चाइल्ड एक्टर, इंक्लूडिंग द वेरी फेमस दो कलियां। 1970 तक ये एज अ चाइल्ड एक्टर काम करती रही बाय द नेम ऑफ बेबी सोनिया। उसके बाद इनकी फैमिली फिर 3 साल के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गई बॉम्बे से। ओरिजिनली वो दिल्ली से ही पहले आए थे। जब नीतू सिंह 5 साल की थी तब वो दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हुए थे। एंड देन अगेन जब नीतू सिंह 15 साल की थी इनकी फैमिली बॉम्बे शिफ्ट हो गई। स्पेशली इनकी मदर एक्टिवली इनके लिए काम ढूंढने लगी और तब इनको इनकी पहली फिल्म मिली 1973 में रिक्शा वाला, जिसमें रिक्शा वाला थे रणधीर कपूर। बिल्कुल मैच नहीं होता, बिल्कुल सूट नहीं होता, इसलिए फिल्म भी फ्लॉप हो गई। रणधीर कपूर यानी कि इनके जेठ जी के साथ इन्होंने काफी फिल्में की थी, तब थोड़ी ना पता था कि आगे जाके जेठ जी बनने वाले। वेल इनकी एक साथ में मूवी थी ढोंगी जिसका यह गाना बहुत सही है, इसका रीमिक्स भी काफी पॉपुलर हुआ था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

नीतू सिंह जी हिंदी फिल्मों के फेम गेम में कब आई? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। देखो, एज अ चाइल्ड एक्टर तो उन्होंने काफी फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्म दो कलियां, उसमें वो इतनी अडोरेबल लगी हैं, वो बहुत पॉपुलर हुई थी तब एज बेबी सोनिया, तब वो काम करती थी। फिर बड़ी होके एज एन अडल्ट तो नहीं बोलेंगे, वो 15 साल की थी एक्चुअली जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म की थी एज अ ग्रोन अप, विच वॉज रिक्शा वाला इन 1973, विच फ्लॉप्ड। लेकिन उसी साल she became immensely popular with this super duper hit film जिसमें उनका सिर्फ एक गाना था। एक्चुअली पूरा रोल उनका था, लेकिन फिल्म की लेंथ इतनी बढ़ गई थी कि उनका रोल कट करना पड़ा, बस ये गाना रखा गया। लेकर हम दीवाना दिल, यादों की बारात फिल्म से। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

आपको पता है नीतू सिंह की मम्मा खुद एक्ट्रेस बनना चाहती थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनका नाम था राजी सिंह और नीतू सिंह के करियर को वही कंट्रोल करती थी, उनके कॉस्ट्यूम्स मेकअप का ध्यान रखती थी। इनफैक्ट नीतू सिंह की एक दो फिल्मों में उन्होंने ऐसे छोटा मोटा रोल भी किया है, लेकिन एक मेजर रोल जो उन्होंने नीतू सिंह की लाइफ में निभाया वो था उनकी लव स्टोरी के अगेंस्ट विलन का। जी सो अमर अकबर एंथनी में जैसे तैयब अली होते हैं जो अकबर और सलमा का रिलेशनशिप अप्रूव नहीं करते हैं, रियल लाइफ में ये राजी सिंह जी थी नीतू सिंह की मामा जो ऋषि कपूर और नीतू सिंह का रिलेशनशिप अप्रूव नहीं कर रही थी, बिकॉज उनको ऐसे लगता था कि कपूर फैमिली के मैन काफी रूमर्स में स्कैंडल्स में फंसते रहते हैं और वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी के करियर में इस तरह का कोई लफड़ा हो। इनफैक्ट जब नीतू सिंह ऋषि कपूर के साथ डेट पर जाती थी तो साथ में उनकी एक कजिन भी जाती थी चेक रखने के लिए, पर धीरे धीरे धीरे फिर वो मान गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
2: अच्छा है।
1: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई।
2: हाँ हाँ सुना।
1: जून भी आ गया। जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
2: मतलब
1: विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
2: तू चले?
1: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
2: और कुछ?
1: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
2: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
1: जनवरी में ही बताया था।
3: विजिट विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन योर गोल्ड ट्रेड इन। विजिट viraniejewelers.com।
1: सेलिब्रेट फ्रीडम विद मिर्ची, July 4th इंडिपेंडेंस डे से August 15th इंडिपेंडेंस डे तक, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम।
4: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
5: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक।
6: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।
7: गुलाबी साड़ी अनी लाली लाल लाल, दिसते में भारी राजा फोटो मजा कर।
8: T-Series present The Mall 4.
9: Ullari bina chutney, kaise bani? Ullari bina chutney, kaise bani?
8: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
11: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
11: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
12: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
14: तेरा क्या होगा कालिया?
15: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
14: अब मिर्ची खा।
16: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू।

नीतू सिंह और ऋषि कपूर की पहली मुलाकात 1974 की फिल्म जहरीला इंसान के सेट्स पर हुई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तब मात्र 15-16 साल की थी नीतू सिंह और ऋषि कपूर इनको बहुत बुली किया करते थे। ये बहुत इरिटेट और अनॉय हो जाती थी उनसे। फिर धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई। दोस्ती मतलब ऐसी कि अपनी रूठी हुई गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए ऋषि कपूर नीतू सिंह से मदद लेते थे। कभी गर्लफ्रेंड को टेलीग्राम भेज, कभी उसके घर पे फोन लगाओ, उसकी मम्मी ने फोन उठाया तो गर्लफ्रेंड को बुलवाओ, इस तरह के काम। लेकिन ये दोस्ती प्यार में कब बदली, कौन सी फिल्म की शूटिंग करते हुए, करते हैं बात थोड़ी देर के बाद। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: लूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
0: एक ही होता है।
1: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऋषि कपूर और नीतू सिंह की पहली मुलाकात तो 1973-74 में हुई थी जहरीला इंसान फिल्म के सेट्स पर, लेकिन उनका प्यार हुआ था कभी कभी फिल्म के सेट पर। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई उससे पहले दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, एक्चुअली दोस्त से पहले भी इनका बैंटर चलता था। ऋषि कपूर काफी बुली किया करते थे नीतू सिंह को, और दोस्त ऐसे बने कि ऋषि कपूर की जो तब गर्लफ्रेंड थी उनसे उनका ब्रेकअप हो गया था, तो उनको मनाने के लिए वो नीतू सिंह की हेल्प लेते थे। वेल, वो गर्लफ्रेंड तो नहीं मानी, लेकिन ऋषि कपूर साहब को नीतू सिंह के लिए उनकी फीलिंग्स का रियलाइजेशन हो गया। उस टाइम ये दोनों इतनी फिल्में साथ में कर रहे थे कि एक दूसरे के ऐसे यूज टू होने लग गए थे। नीतू सिंह जी को भी थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा था, तो कभी कभी फिल्म की शूटिंग के दौरान ये प्यार की आग दोनों तरफ बराबर टाइप की लगी हुई थी, लेकिन कोई कन्फेशन नहीं हुआ था। फिर कभी कभी फिल्म के बाद जब ऋषि कपूर साहब एक और फिल्म की शूटिंग यूरोप में कर रहे थे, तो वो नीतू सिंह को बहुत मिस करने लग गए। तब उन्होंने उनको एक टेलीग्राम भेजा कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, तुम्हारे बिना मुझे अकेला लग रहा है। एंड दैट वॉज सॉर्ट ऑफ लव कन्फेशन। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Ghana Indie Top 10. Kanika ke saath on Mirchi.
2: Mirchi sun rahe hain aap. Ab bari hai to set the pop clock of the week. Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Hafte ke top 10 hottest gaane hain. Usme ek nayi entry hai. Hamara 90s 2000s ka iconic indie pop gaana hone wala hai. A special spotlight, all this and more. To seedha shuruaat karti hu is hafte ki with Ghana number 10. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे उतरा है. शुरुआत ही इस हफ्ते के एक धमाकेदार गाने के साथ हो रही है. साडी सुन बाय हर्ष नुसी. हर्ष नुसी एंड दीप क्लेयर की लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव. गाना कास्टिंग बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है. साडी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद गाना नंबर 9 पर इस अनीश सरकार हृदय का गाना उड़ी उड़ी, जो पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है. चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार है दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. दोनों गाने बैक टू बैक only on Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Number
3: 10. Hao chup kar lang jave kol di tu sang jave ko takkani ch tere rang vich rang jave.

0: ढक जाए। This one is such a fun song. गाने का नाम है उड़ी उड़ी by अनीश सरकार। हृदय पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके this week on गाना नंबर 9। इस काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो इस काउंटडाउन का सबसे सीनियर सिटीजन है।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par jao. Mujhe follow kare. Mera handle is at RJ Kanika. Follow karna bilkul free hai. At RJ Kanika par koi gaane suggest karne hai, koi baate batani hai, bindaas aake hit me up. Jo agle wala gaana hai, usse is countdown pe pure 23 hafte ho chuke hain. It's a Coke Studio Bharat song. जितना खूबसूरत ये गाना है उतनी ही खूबसूरत इस गाने तक पहुंचने की जर्नी है। आप सोच के देखिए, एक आर्टिस्ट जो सिर्फ अपने बेडरूम में गिटार के साथ कुछ लोगों के लिए गाने लिखता है, बनाता है, वो अपनी जॉब करता है, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, कोई रियलिटी शो स्टार नहीं, कोई बड़ा ग्रैंड लॉन्च नहीं, सिर्फ यूट्यूब के जरिए अपने खुद के लिखे गाने अपनी ऑडियंस को सुनाता है। उसकी ऑडियंस में 5 से 10 लोग जुड़े, 10 से 50, 50 से 100, ऐसे करते करते वो एक दिन कोक स्टूडियो भारत का सबसे बड़ा गाना बनाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट अनूप जैन एंड उनकी जर्नी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वंस दैट वी हैव सीन इन इंडी पॉप म्यूजिक। बट व्हाट आई एब्सोल्युटली लव अबाउट दिस कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग जो अनूप जैन का है, इसमें ना किसी ने भी किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की कि जी हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है तो आप ऐसे बड़ा ड्रामेटिक गाना बनाओ। प्लेटफॉर्म ने आर्टिस्ट को नहीं बदला बल्कि उनकी दुनिया में वो खुद ढल गए और इसीलिए शायद ये जो गाना आने वाला है वो इतना स्पेशल लगता है। कोक स्टूडियो को हम अक्सर फोक कंटेम्प्रेरी म्यूजिक के फ्यूजन से जानते हैं, लेकिन अनूप जैन का गाना जिसका नाम है अर्ज किया है, दैट्स मोर देन अ फ्यूजन, इट्स अ लिटरेरी फ्यूजन, जहां उर्दू शायरी मिलती है कंटेम्प्रेरी पॉप सॉन्ग राइटिंग से एंड अनूप जैन इज द किंग ऑफ पॉप सॉन्ग राइटिंग। एंड आई स्वेयर ये गाना इस बात का इतना बड़ा प्रूफ है दैट आज इंडिया का इंडिपेंडेंट म्यूजिक अपने आप में इतना मच्योर, इतना इंडिपेंडेंट हो गया इन रियल सेंस दैट बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स लाइक कोक स्टूडियो भारत ना कि सिर्फ उसे पहचान रहे हैं, उसको जगह दे रहे हैं और उसको बिल्कुल भी बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा हमारे हिसाब से। That's why this song sounds so incredible because इस गाने के जरिए अनूप जैन हर उस आर्टिस्ट के दिल की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार ये गाना 6 हफ्ते नंबर 1 पे भी रहा है। पिछले हफ्ते 10 पर आ गया था लेकिन फिर से 2 पोजीशंस ऊपर जंप करके अनूप जैन की आवाज में गाने का नाम है अर्ज किया है दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। You are listening to Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.
1: Number 8.

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, sakka bana. Ya bana. Murga, murga. Nabeed wala murga. Mirchi murga.
3: Hello.
4: Hello.
3: कौन?
4: हेलो
3: हाँ बोलो कौन
4: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
3: हाँ बोल कौन रहा है
4: बोल कौन रहे हो कंप्लेन करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
3: बोल कौन रहे हो
4: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
3: हाँ बोला था
4: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
3: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर
4: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
3: हाँ बोलो
4: यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
3: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
4: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
3: हाँ हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
4: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से बंद करो सर
3: कब आया था कब घुसा अंदर
4: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
3: तू कहाँ से रहा है तो नहीं हो गया है
4: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
3: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
4: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
3: मेरी सीवर में घुसा है किसी और के सीवर में घुस गया
4: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
3: सीवर में मरा रहा है तू
4: गाली तो मत दो
3: हेलो
4: हेलो
3: फिर फोन कर दिया तूने
4: अच्छा है सीवर साफ हो जाएगा काम करो एक चीज बोलो
3: क्या बोलो
4: कुकुलुकु
5: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका बन गया
3: कुकुलुकु
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: गोल्ड प्राइसेस आर राइजिंग इन्वेस्ट इन प्योर गोल्ड बार्स विद राज जूल्स
7: वी हैव अ रेडी स्टॉक एट राज जूल्स बाय गोल्ड बार्स नाउ एट राज जूल्स
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155 लॉग ऑन टू lionmtg.com
9: सुनो ब्राइड्स अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
8: तो आइए फैशन क्वीन यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन
8: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इज़िलन
10: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
11: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
10: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
12: Gulabi saadi ani lali lal lal Disate me bari raja photo maza ka
13: T-Series present Dhamaal 4 Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
14: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
15: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: Ghana,
1: Ghana, Ghana,
0: Ghana
1: Indie Top 10.
0: Ghana Indie Top 10. Kanika ke saath on Mirchi.
16: Number 6.

0: The one and only Diljit Dosanjh, resident dealer of superhit songs, पिछले हफ्ते से तीन पोजीशन नीचे ड्रॉप होके उनका गाना डीलर दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उसे पहले एक नई नवेली एंट्री हुई जसलीन रॉयल का गाना इनाम, जिसने डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: हेलो स्वागत है आपका. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ. मेरा हैंडल इज @RJKanika. दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू शाइन स्पॉटलाइट ऑन आर इंडी पिक ऑफ द वीक. एंड आज का गाना स्पॉटलाइट इज गाने का नाम है रोज रोज बाय द येलो डायरी फीचरिंग शिल्पा राव, जो साल 2021 में रिलीज हुआ था. आज साल 2024 में हमें रोज रोज आदत है इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन में बड़े बड़े कोलैबोरेशंस देखने की, लेकिन 6 साल पहले 5 साल पहले इट वाजंट लाइक सच अ रेगुलर डील. एंड दैट्स व्हाई दिस सॉन्ग स्टैंड्स आउट. एक वक्त था जब इंडियन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का सपना था कि बस उनका गाना किसी फिल्म तक पहुंच जाए, लेकिन 2019-2020 के दौर से वो उल्टा होना शुरू हुआ था जब फिल्मों के बड़े प्लेबैक सिंगर्स इंडिपेंडेंट म्यूजिक के मीटिंग पॉइंट पे आने लग गए. एंड देन दिस सॉन्ग वॉज अ एब्सोल्युटली जेनरेशनल रेवोल्यूशनरी सॉन्ग. बिकॉज एक तरफ है येलो डायरी, वन ऑफ द बेस्ट इंडी पॉप बैंड्स दैट वी हैव सीन. मुंबई से उन्होंने अपने बैंड की शुरुआत करी. कोई ओवरनाइट वायरल एक्ट नहीं है. सॉन्ग टू सॉन्ग, गिग्स टू गिग्स, कॉलेज फेस्टिवल, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू उन्होंने अपनी ऑडियंस बनाई. राजन बत्रा, उनकी राइटिंग, उनकी ऑल्टरनेटिव पॉप साउंड हमेशा उन लोगों के साथ कनेक्ट करती है जो लिरिक्स के जरिए गानों में अपनी कहानी ढूंढते हैं. एंड देन दिस सॉन्ग है शिल्पा राव. शिल्पा राव हु इज सिनोनिमस फॉर बिग स्क्रीन सॉन्ग्स लाइक खुदा जाने चलिया, और उन्होंने इस गाने को अच्छे से बहुत ज्यादा अच्छा बना दिया. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए फॉर दिस हार्ट ब्रेक सॉन्ग, जहाँ एक अजीब सी खामोशी के बारे में बात हो रही है, जहाँ कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ है, बातें हो रही हैं पर असली बातें होनी बंद हो गई है. येलो डायरी का गाना फीचरिंग शिल्पा राव. दिस इज रोज रोज ऑन अ गाना स्पॉटलाइट दिस वीक. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: डूड, दिस इज द सॉन्ग जिसकी वजह से राजन बत्रा मेरे एब्सोल्यूट टॉप फेवरेट वोकलिस्ट बन गए थे. व्हाट अ वॉइस, गूज़बम्स आ जाते हैं उनकी गाने के थ्रू. जो फीलिंग्स बयां करना जा रहे हैं ना, वो इनटू 10 टाइम्स फील होती है. राजन बत्रा की आवाज, येलो डायरीज का गाना फीचरिंग शिल्पा राव, दैट वॉज रोज रोज. अगर इस गाने को थोड़ा भी भूल गए थे तो वापस अपनी सारी प्लेलिस्ट में एड कर लीजिए. वन ऑफ दोज पॉप सॉन्ग्स जो उतने ही बड़े हुए जितने फिल्म के गाने होते हैं. ना काउंटडाउन पे आगे बढ़ने से पहले इट्स टाइम फॉर अ इंडी पॉप क्विज. एट आरजे कनिका पर आओ और मुझे बताओ दैट इंडिया का पहला रियलिटी स्टार कौन था जो एक म्यूजिशियन था. इंडियन आइडल जीते थे, फिर उनका एक गाना आया था जिसमें बारिश हो रही है. कौन थे वो आर्टिस्ट जो एक रियलिटी शो के जरिए मोहब्बतें लुटा रहे थे. एट आरजे कनिका पर जल्दी आके मुझे उनका नाम बताओ. काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हुए वी माइट फीचर हिज सॉन्ग. अभी अप नेक्स्ट काउंटडाउन का अगले वाला गाना इज अ संजू राठौर सॉन्ग. गाने का नाम है बैंगल्स. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बैंगल्स इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: Rana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi It's Hot.
1: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
2: अच्छा है।
1: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई।
2: हाँ हाँ सुना।
1: जून भी आ गया। जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
2: मतलब?
1: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
2: तो चले।
1: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
2: और कुछ?
1: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
2: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
1: जनवरी में ही बताया था।
0: Visit Virani Jewelers on Oak Tree Road. 0% making charges on 22 carat and diamond jewelry and 100% value on your gold trade-in. Visit ViraniJewelers.com.
1: Celebrate freedom with Mirchi. July 4th Independence Day se August 15th Independence Day tak. Sirf freedom hi freedom.
3: Only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: There's nothing like the magic of live theatre.
7: Celebrate Prayog Theatre Group's 50th anniversary kickoff with two memorable stage productions, the laugh out loud comedy Last Over and the timeless classic Ala Afsar, Dharandhar famed Rakesh Bedi.
8: Join us on Friday, July 10th at 7 p.m. at Brook Arts Centre, Bound Brook, New Jersey. Book your tickets now at prayogtheatre.com.
9: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्काटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरुदेव।
10: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
11: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
12: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
13: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all in one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
14: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
15: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
16: Listener MA, back to back gana sunega.
17: Back to back gana sunega.
0: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
18: Ghana Indie Top 10.
0: Ghana Indie Top 10. Kanika ke saath on Mirchi.
19: Number 4.

0: आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां का गाना 11 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन ऊपर जम करके गाने का नाम है ए अजनबी, दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: मिर्ची सुन रहे हैं आप, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझसे कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई भी गाना सजेस्ट करना हो, बातें शेयर करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

0: द ओजी वाई कुमार सानू कॉल तेरा मेरा प्यार। इस गाने के बाद इतने सारे मैसेजेस, कहानियां, किस्से सुनाए लोगों ने मुझे अपने कॉलेज रोमांस के। एंड अश्काई और मैं बहुत दिल से बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहते हैं आपको इस सेगमेंट के साथ क्लासिक को इतना प्यार देने के लिए। वी रियली टेक योर रिक्वेस्ट वेरी सीरियसली। जो इस हफ्ते हम गाना फीचर करने वाले हैं वो भी आपकी रिक्वेस्ट से ही बजा रहे हैं। द सॉन्ग वी गोना फीचर दिस वीक इज
1: मोहब्बत।

The OG pop star song गाने का नाम है मोहब्बतें लुटाऊंगा by अभिजीत सावंत। मैं ये सबका गाना बन गया था, लाइक एक पॉप एंथम बन गया था पूरे देश का गाना। साल था 2005, हमारे घर में लैंडलाइन होता था। कॉल करके SMS करके वोट्स भेजे जा रहे थे। पहली बार लगा कि टीवी से हमने किसी को जिताया है और सब उस जीत का हिस्सा थे। हमें मिला हमारा पहला इंडियन आइडल अभिजीत सावंत एंड ये था उनका पहला गाना मोहब्बतें लुटाऊंगा। एंड इवन द सॉन्ग नाउ जब मैं उस गाने की वीडियो को देखती हूँ विद मच मोर सेंस एंड पर्सपेक्टिव, इट ऑल मेक सेंस। उस गाने के थ्रू वो अपनी जर्नी ही तो बता रहे हैं दैट थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। मैं एक मिडिल क्लास लड़का था बॉम्बे से जो एक स्टेज पर खड़ा हुआ और पूरे देश ने मुझे यहाँ जिता दिया, तो अब मैं सिर्फ मोहब्बतें लुटाऊंगा ब्रो। स्कूल में, ट्यूशन में, म्यूजिक चैनल्स पर, रेडियो पर, हर जगह अभिजीत सावंत ही थे। इट वॉज वन ऑफ दोज रियल रेयर मोमेंट्स। पर एकदम सच बताना, दिल के कोने में झांक कर बताना, झूठ मत बोलना मुझे, कहीं ना कहीं हम इस गाने को भूल चुके थे। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, गाना चलते ही यू विल बी ट्रांसपोर्टेड बैक टू दैट सिंपलर टाइम्स। अभिजीत सावंत की आवाज, समीर के लिरिक्स, प्रेम एंड हरदीप का म्यूजिक, 2005 का ये आइकॉनिक इंडी पॉप गाना, दिस इज मोहब्बतें लुटाऊंगा ऑन आग कसेट क्लासिक दिस वीक। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

अगर मैं गाऊं। अभिजीत सावंत की आवाज में दैट वाज मोहब्बतें लुटाऊंगा, बट एक्चुअली यू नो आदर लिरिक्स, समीर ने क्या लाइंस लिखी हैं, इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था, लाइक एग्जैक्टली टेलिंग अभिजीत सावंत की जर्नी थ्रू दिस सॉन्ग। एट आरजे कनिंग ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, 90s 2000s का वो जो भी इंडी पॉप क्लासिक गाना है जो यू स्टिल लव हमारे साथ शेयर करो। अश्का और मैं आपकी रिक्वेस्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं, वी माइट फीचर योर फेवरेट नेक्स्ट वीक। Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी, दिलजीत दोसांझ एंड सिया का आइकॉनिक कोलैबोरेशन, गाने का नाम है रांझा फीचरिंग प्रोडक्शन बाय डेविड गेटा। नेवर थॉट आई विल से ऑल दीज नेम्स टुगेदर, बट गाने का नाम है रांझा फीचरिंग प्रोडक्शन बाय डेविड गेटा। नेवर थॉट आई विल से ऑल दीज नेम्स टुगेदर। 12 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक

0: गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाओ, कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना हो, गाना शेयर करना हो, बिंदास आके हिट मी अप। अक्सर लोग गाने सुन के गानों का नाम भूल जाते हैं और मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, कनिका वो गाना नंबर 5 कौन सा था, जो गाना नंबर 9 पर बजाया वो कौन सा गाना था। सो बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक रिकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर था हर्ष नुसी का साडी सुन। उसके बाद अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी वॉज ऑन गाना नंबर 9। गाना नंबर 8 पर दिस वीक अनूप जैन का अर्ज किया है।
1: कायरे जो थे वो शायर बने।
0: जसलीन रॉयल का इनाम ने डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 7। फिर दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन गाना नंबर 6।
2: जिधर तू पीछे यातनगी ना चोपर जोगी डाब दबी ना।
0: संजू राठौर विद बैंगल्स ऑन गाना नंबर 5। स्टूडियो भारत का आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का गाना ए अजनबी ऑन गाना नंबर 4। दिलजीत दोसांझ सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 3। एंड द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन द हरियाणवी सेंसेशन। 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग यानी गाना नंबर 1 पर है एक बार फिर से शीशा बाय मिट्टर और स्वरा वर्मा, मिट्टर और की कॉम्पोजिशन। ये गाना भी 14 हफ्तों से बरकरार है। सो दोनों गाने बैक टू बैक, बैरन ऑन गाना नंबर 2, फिर मिट्टर और का शीशा ऑन गाना नंबर 1। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
3: नंबर 2।

0: gold prices
1: are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
0: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Yabala. Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: हेलो बेटा नवनीत,
3: आप कौन?
4: पापा कहाँ हैं?
3: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
4: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं, हम हाँ। बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी भी बात पे। तो अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
3: लेकिन आपको काम क्या है?
4: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
3: पापा ने कहा था?
4: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मदर को।
3: क्या हुआ अंकल?
4: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, तो दोस्त है ना हम आपस में।
3: अब मुझे क्यों डांट?
4: चुप कर।
3: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ।
4: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा था तूने?
3: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं
4: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
3: लेकिन बुरी क्या
4: लगी? अंकल कल भी आखो है, एक मारूंगा।
3: बदतमीजी क्या करी
4: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
3: कह रहा मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
4: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
3: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
4: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
3: क्या बोलूं?
5: नवनीत कुकड़ू को बोलो, मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
3: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
4: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
12: There's nothing like the magic of live theater.
13: Celebrate Priyog Theatre Group's 50th anniversary kickoff with two memorable stage productions, The Laugh Out Loud comedy Last Over and the timeless classic Ala Afsar, Dharandhar famed Rakesh Bedi.
12: Join us on Friday, July 10th at 7 p.m. at Brook Arts Center, Bound Brook, New Jersey. Book your tickets now at PriyogTheatre.com.
14: ఓక్ ట్రీ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూసివ్ డైమండ్ స్టోర్.
15: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటేర్స్ నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.
16: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
17: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
16: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
18: Tera kya hoga, Kalia?
19: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
18: Ab... Mirchi ka.
0: Radio Mirchi. It's hot.

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई।
1: हाँ हाँ सुना।
0: जून भी आ गया। जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब
0: विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तो चले,
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: विजिट विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन योर गोल्ड ट्रेड इन। Visit viranijewelers.com.
0: Celebrate freedom with Mirchi. July 4th Independence Day se August 15th Independence Day tak. Sirf freedom hi freedom.
3: Only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
7: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, EKG एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स।
6: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस। फॉर एनरोलमेंट कॉल 9088222002 और विजिट aimseducation.edu.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
10: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
13: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
14: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
13: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
15: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है।
13: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

दोस्तों मिडवीक का भी ना एक अजीब ही फेज होता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब मंडे का शौक निकल जाता है ना और फ्राइडे की एक्साइटमेंट आई नहीं होती है, तब ये जो मिडवीक है ना यानी वेंसडे, ये बिल्कुल मूवी का इंटरवल जैसे लगता है। मतलब स्टोरी तो चल रही है पर क्लाइमैक्स अभी दूर है। और इसी वक्त ना इंसान सबसे ज्यादा चाय पीता है और सबसे ज्यादा बस वीकेंड आ जाए यही बोलता रहता है। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार इसी मिडवीक में ना सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव आइडियाज भी आते हैं। तो आप भी बताना दोस्तों कि आपका मिडवीक मोटिवेशन क्या है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मिडवीक में आपके मूड को अप करने के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burka, burka. La virtua la burka.
2: Mirchi, burka.
3: Hello.
4: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ।
4: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजना है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
3: तो हुआ कैसे है, मतलब तो बड़ी उम्मीद थी भाई के निकलेगा हमारा।
4: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको।
3: कितने का है मेरा?
4: 7,500 रुपए का।
3: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
4: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
3: किस चीज की फीस?
4: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
3: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
4: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
3: मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
4: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं सर, करोड़ों की मशीन है, आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं। उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
3: ये भी तुम्हें रख लो, ये मैं तुम फोन क्यों कर रहा हूँ?
4: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
3: हम। भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें जैसे रख लो, ये बीक में रख लो हमें जैसे। अरे यार आप लूट रहे हो पब्लिक को यार।
4: तो यार ये आपको पहले सोचना चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी, आप मुझे बताइए, आप मुझे
3: तुमने आम संगत तुमने बनाया ठीक है ना। हाँ भैया पैसे भाड़ मंगाए।
4: आपकी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन में लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए संदीप।
3: हाँ बोलो बोलो
4: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
1: ये पकड़ा।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
9: गुलाबी साड़ी अनी लाली लाल लाल, दिसते में भारी राजा फोटो मजा का।
10: टी सीरीज प्रेजेंट द माल 4।
11: गुलाबी बिना चटनी कैसे बनी,
10: Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
12: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
14: Kisi zamane mein माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
15: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
16: Listener MI, back to back gana sunega.
17: Back to back gana sunega.
16: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब भी क्राइसिस की बात होती है ना, तो यार हर क्राइसिस सिर्फ चैलेंजेस लेकर नहीं आती, कभी कभी वो अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आती है। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग हेडलाइंस देखते हैं और कुछ लोग पॉसिबिलिटीज। और जब चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन और मार्केट अनसर्टेनिटी की बातें होती है ना, तो बहुत से लोग अक्सर एक सवाल पे अटक जाते हैं कि यार इसमें घर खरीदने का बेस्ट टाइम क्या होता है, क्या परफेक्ट मार्केट का वेट करना चाहिए या अपॉर्चुनिटी को पहचानना चाहिए जब वो सामने हो। और इसी पर थोड़ी क्लैरिटी और एक्सपर्ट इंसाइट देने के लिए मेरे साथ है मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। तो अनसर्टेनिटी के बीच अपॉर्चुनिटी को कैसे पहचाने और होम बाइंग के लिए क्या ये राइट टाइम है, कैसे इवैल्यूएट करें, पूछते हैं बीश से। ओवर टू यू बीश।
1: गुड इवनिंग मिचेल, दिस इज योर फ्रेंड बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। हॉट डे आउट देयर एंड टुडे द यूएस मार्केट्स फॉल आफ्टर ट्रंप डिक्लेयर सीज फायर इज ओवर विद ईरान एंड गैस प्राइसेस जंप एंड आल्सो It is affecting the mortgage rates. 75% of Americans say buying a home is priority. The cost of purchasing a home are a top concern for Americans who rent. But this financial concern aren't putting a hard stop on the sales of home. Recent and prospective buyers are optimistic, citing the investment potential of the home as a top reason for purchasing. Yes, listeners, if you invest money in your home in the long run, you'll see an annual return on your money like more than 10%. And to make your dreams come true of owning a home, call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6.25%. 20-year fixed mortgage rate, 6.125%. 15-year fixed mortgage rate, 5.75%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com, and it is lionmtg.com. Remember, listeners, once again, Lion Mortgage is licensed to do business in New Jersey, New York, and Pennsylvania, but we can do DSCR loans all over the country. We specialize in purchase and refinance loans. We offer conventional loans, FHA loans, great rates on jumbo loans. That's why it makes perfect sense to rely on Lion Mortgage for the expertise, flexible financing choices, and the personalized guidance you need to make safe and sensible decisions. So once again, friends, buying your dream home or refinancing, don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.
2: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई।
1: हाँ हाँ सुना।
0: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब?
0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तू चले?
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: Visit Virani Jewelers on Oak Tree Road. 0% making charges on 22 carat and diamond jewelry and 100% value on your gold trade-in. Visit ViraniJewelers.com.
0: Celebrate freedom with Mirchi. July 4th Independence Day se August 15th Independence Day tak. Sirf freedom hi freedom.
3: Only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot. It's hot.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
10: Tera kya hoga, Kalia?
11: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
10: Ab mirchi kha.
12: Radio Mirchi, it's hot.

0: गाना बजा दूं
1: श्याम शानदार, लेट्स डू नॉटंकी हैव अ फंकी टाइम।
2: एक ऐसा एल्बम बन जाए जिसका हर एक गाना दिल को छू जाए। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जहां इतने सारे गाने बनते हैं, कुछ हिट होते हैं, कुछ फ्लॉप होते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं ना जिसका हर एक गाना दिल को छू जाता है। और 2008 की रिलीज दोस्ताना का एल्बम, ओहो, इट वॉज वन दैट एल्बम जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक था। विशाल शेखर कंपोज, जिसके सारे गाने इतने अमेजिंग थे, लेकिन जब दोस्ताना रिलीज हुई थी और टीवी पे ये गाना रिलीज हुआ था तो माय गॉड, माइंड ब्लो हो गया था। जी हाँ, मतलब नॉर्मली ऐसे टीवी पे नॉर्मल कलर्स दिखते हैं, लेकिन सडनली एक दिन ब्लू पानी दिखने लगा। उसमें जॉन अब्राहम अपनी अमेजिंग सी स्माइल लेकर मायामी बीच पे दिखाई दिए विद शिल्पा शेट्टी डूइंग शट अप एंड बाउंस। माय गॉड, दैट सॉन्ग नॉट जस्ट ब्लू माय माइंड विजुअली बट ऑल्सो ब्लू माय माइंड म्यूजिकली, क्योंकि सुनिधि चौहान की आवाज और अमेजिंग सा ये गाना मायामी बीच पर शॉट, कि जब मायामी जाओ तो ये गाना दिमाग में प्ले ना हो, बैकग्राउंड में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज बातें करते हैं दोस्ताना के एल्बम के बारे में, एंड स्टार्टिंग विद दिस वन सॉन्ग शट अप एंड बाउंस राइट हियर ऑन मिर्ची। तो आपके लिए मैं बजाने वाली हूँ शट अप एंड बाउंस, लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, बिकॉज इट्स गोना बी शट अप एंड बाउंस बाय सुनिधि राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

की टाइम। एक ऐसा एल्बम बन जाए जिसका हर एक गाना दिल को छू जाए। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और 2008 में एक ऐसा ही एल्बम बना था जिसका यार हर एक गाना एक से बढ़कर एक था। बात हो रही है दोस्ताना मूवी की, या जिसका म्यूजिक दिया था विशाल और शेखर ने और जिसको प्रोड्यूस किया था हम

करण जौहर ने। वैसे तो यार शराब एंड बाउंस इस मूवी का सबसे ज्यादा फेमस गाना था, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मायामी जा रहे हो और जॉन को इमेजिन ना करो, शिल्पा शेट्टी को इमेजिन ना करो और ये गाना बैकग्राउंड में प्ले ना करो। लेकिन और एक गाना है इस मूवी का जो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही फन है, एंड दैट इज मादा लाडला बिगड़ गया। मतलब माँ को अगर डायरेक्टली आपको डांटना नहीं है तो आजकल माए मादा लाडला बिगड़ गया ही कह देती है। और जिस तरह से किरण खेर ने चिल्ला कर जोर से कह दिया था हाय रब्बा मैनू चख ले यार, उस वजह से वो लाइंस एक्चुअली गाने में थी ही नहीं, लेकिन वो इतने फीलिंग्स के साथ बोली गई थी कि विशाल जेकर ने डिसाइड किया कि ये जो पैच है ये हम गाने में एक्चुअल गाने में भी यूज करेंगे। तो इसलिए बीच बीच में आपको किरण खेर की आवाज भी आएगी कि हाय रब्बा मैनू चख ले। बस माँ के जो फीलिंग्स है उसे विशाल शेखर जैसे कंपोजर्स भी बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर पाए, उन्होंने उनका पैच उस गाने में रखा और कहीं ना कहीं उसी वजह से ये गाना हिट हुआ है। तो चलिए सुनते हैं मादा लाडला बिगड़ गया फ्रॉम दोस्ताना। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस मूवी, टेल मी ऑन इंस्टा एट @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और तब तक के लिए मादा लाडला राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ब्रॉट यू बाय दीप फूड्स। दीप फूड्स खाओ तो जानो।

0: 맞춤까?
1: एक ऐसा एल्बम बन जाए जिसका हर एक गाना दिल को छू जाए। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हां, बना था और बिल्कुल बना था 2008 में। एक ऐसा एल्बम बना था दोस्ताना, जिसका यार हर एक गाना दिल को छू गया था। एंड वन ऑफ द मोस्ट पार्टी सॉन्ग्स जो इसी मूवी से, इसी म्यूजिक एल्बम से निकला है, That is a देसी गर्ल, sung by शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान एंड विशाल ददलानी। ये पूरा का पूरा एल्बम ही वैसे तो यार विशाल शेखर ने बनाया है, लेकिन ये जो गाना है वो काफी खास है, क्योंकि इस गाने ने ना प्रियंका चोपड़ा को एक आइडेंटिटी दी। जी हाँ, मतलब प्रियंका चोपड़ा वैसे तो इस मूवी में लहरों में एंट्री मारते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन इस गाने के बाद देसी गर्ल हर शादी का एक एंथम भी बन गया। और हमें भी कहाँ पता था कि प्रियंका भी इंटरनेशनल हो जाएगी और उनकी एक आइडेंटिटी ही बन जाएगी देसी गर्ल। तो जी हाँ, देसी गर्ल वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सॉन्ग्स ऑफ दिस एल्बम। वैसे तो हम शट अप एंड बाउंस के बारे में बात कर चुके हैं और आप मादा लाला तो सुन ही चुके हो, तो चलिए आपके लिए बजाते हैं देसी गर्ल राइट हियर ऑन मिर्ची। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और तब तक के लिए देसी गर्ल राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iska bana, uska bana, saka bana. Ja bana. Burka, burka. Na vjet bala burka.
1: Milci, burka. Hello.
2: Hello.
1: हेलो
2: हाँ
1: बोलो कौन
2: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ बोल कौन रहा है
2: बोल कौन रहे हो कंप्लेन करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
1: बोल कौन रहे हो
2: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ बोला था
2: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
1: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर
2: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
1: हाँ बोलो
2: यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
1: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
2: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
2: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से बंद करो सर
1: कब आया था कब घुसा अंदर
2: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
1: तू कहाँ से आया तो नहीं हो गया है
2: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
1: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
2: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
1: मेरी सीवर में घुसा है किसी और के सीवर में घुस गया
2: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
1: सीवर में मरा रहा है तू
2: गाली तो मत दो
1: हेलो
2: हेलो
1: फिर फोन कर दिया तूने
2: अच्छा है सीवर साफ हो जाएगा काम करो एक चीज बोलो
1: क्या बोलो
2: कुकुलुकू
3: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका पर क्या
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज जूल्स किंगडम ऑफ जूल्स वेयर ट्रेडिशन मीट स्टाइल
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Kisi zamane mein maa haathon se ghisti, pyar se kootti, muskurakar peesti. Apne ghar ke aangan mein din bhar un masalon ko sehlaye, khushiyon ke swaad chakhti. वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी दीप खाओ तो जानो
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155 लॉग ऑन टू lionmtg.com
9: Oak Tree Road लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तनर कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर
10: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स GIA सॉलिटेयर्स नेकलेसेस रिंग्स मरियो स्टनिंग पेंडेंट्स कृष्णा ज्वेलर्स ओक ट्री रोड ईसलिन
11: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
12: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा
13: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
12: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
13: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज
12: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन
14: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
15: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
16: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
15: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
17: Ise apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
15: Moral of the story? नंबर वन सिर्फ एक ही होता है एक ही होता है जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है रेडियो का बच्चन कहो या कोहली न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं इट्स हॉट

मूवी हो या मूड स्विंग, दीप पॉपकॉर्न के बैग में ना हर सीन का सलूशन मिल ही जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और एक हाथ में रिमोट, दूसरे हाथ में दीप टर्मरिक पॉपकॉर्न, यानी हेल्थी और ट्रेजिकली डिलीशियस कॉम्बो, या फिर दीप मसाला पॉपकॉर्न जो हर बाइट में इंटरवल वाला ड्रामा दे। यार फ्लेवर्स इतने जिंदा कि आप खाओगे और कहोगे कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि टेस्ट अभी भी करारी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देयर इज नो ग्रीस, नो गिल्ट, ओनली पॉप एंड मस्ती। तो आज ही मूवी टाइम के साथ ट्राई करना दीप पॉपकॉर्न, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई,
1: हाँ हाँ सुना,
0: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब
0: विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तो चले,
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: विजिट विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन योर गोल्ड ट्रेड इन। विजिट viraniijewelers.com।
0: सेलिब्रेट फ्रीडम विद मिर्ची, जुलाई 4th इंडिपेंडेंस डे से अगस्त 15th इंडिपेंडेंस डे तक, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम।
3: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Inefficient.
7: Very complex.
8: Clumsy hai.
9: Confusion hi confusion.
4: Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor and freshness guaranteed. Deep cow to jano.
13: Gulabi saadi ani lali lal lal. Disate me bari raja photo maza ka.
14: T-Series present Dhamaal 4.
15: Ulaadi bina chatni kaise bani.
14: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
16: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.

शमशाद लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में, जहां हम बातें कर रहे हैं एक ऐसे खास एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना अमेजिंग है। जी हां, बात हो रही है 2008 में रिलीज दोस्ताना मूवी की, जिसके जो गाने हैं वो कंपोज किए हैं विशाल शेखर ने। और क्या कंपोज किए, मतलब एक से बढ़कर एक गाना है इस एल्बम में। और वैसे तो हम इतने सारे गाने प्ले कर चुके हैं, लेकिन एक सॉन्ग रिक्वेस्ट आई है रौनक पटेल से, जो कि रहते हैं पिस्कैटवे। उन्होंने कहा है कि यार जब भी कोई ट्रिप जाती है और दोस्त साथ में होते हैं तो ये गाना तो हमेशा बजता ही है उस ट्रिप में फ्रॉम दिस मूवी, क्योंकि ये गाने का एक टैगलाइन है, तू है तो आई विल बी ऑल राइट। और हर बार दोस्तों के साथ यही फील होता है कि भाई तू है ना तो आई विल बी ऑल राइट। तो जी यार, चलिए इसी फीलिंग के साथ रौनक पटेल की रिक्वेस्ट पर ये गाना बजाते हैं फ्रॉम द मूवी दोस्ताना, विच इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एल्बम्स। तो दोस्तों आप भी मुझे बताइए ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जिसके सारे गाने आपको पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार बजाते हैं ना उसके सारे गाने यहाँ पर और कहाँ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
5: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
7: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

शाम शाम द लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और बातें हो रही है एक ऐसे एल्बम के बारे में यार जिसका हर एक गाना धमाकेदार है, दिल को छू जाने वाला है। जी हाँ, 2008 की रिलीज दोस्ताना मूवी जिसे प्रोड्यूस किया था करण जौहर ने और जिसका म्यूजिक कंपोज किया था विशाल शेखर ने, यार क्या एल्बम बनाया, हर एक गाना दिल को छू जाने वाला था। और एक ऐसे ही गाने की रिक्वेस्ट आपसे आई है, दैट रिक्वेस्ट इज फ्रॉम प्रियंका। और प्रियंका कहती है, वैसे प्रियंका रहती है जर्सी सिटी में लेकिन वो फिलहाल विजिट कर रही है एडिसन, अपने यू नो पार्टनर से मिलने आई है। और जब भी वो लोग डेट नाइट्स पर जाते हैं तब ये गाना बहुत बार वो अपने प्लेलिस्ट में बजाते हैं, एंड दैट इज खबर नहीं इट्स एन आयरनी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डेट पे कहाँ जाना है यही हमको खबर नहीं होती। लेकिन ये जो गाना है श्रेया घोषाल की आवाज़ में, बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है, तो श्रेया घोषाल एंड शान की आवाज़ में। तो चलिए आज प्रियंका के लिए ये गाना प्ले करते हैं, आयरॉनिकली उनका नाम भी प्रियंका है एंड शी इज़ गोना लव दिस सॉन्ग। तो चलिए आज प्रियंका के लिए खबर नहीं प्ले करते हैं, लेकिन आप भी दोस्तों मुझे बता सकते हो विच इज़ दैट वन एल्बम जिसका हर एक गाना बहुत अमेजिंग है और आप कभी स्किप नहीं कर पाते हो। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI, क्योंकि मेरा तो काम ही है आपके लिए वो गाने प्ले करना, राइट हियर ऑन मिर्ची। और कहाँ, इट्स हॉट।

दोस्तों, एक अजीब सा मैजिक चल रहा है आजकल। जो गाने हम कैसेट या सीडी पे सुनते थे, वही आज रील्स पर ट्रेंड कर रहे हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। क्या आपने भी नोटिस किया है कि यार आजकल ना ये जो सारे गाने हैं वो रीडिस्कवर हो रहे हैं, जो हमने कभी लाइव फील किए थे, जैसे कि लग जा गले, आज जाने की जिद ना करो, या फिर ये शाम मस्तानी है। ये सिर्फ पुराने गाने ही नहीं रहे, ये फिर से नए फेवरेट्स बन रहे हैं। और सिर्फ सुनने तक की बात नहीं है, इनके नए नए वर्जन्स आ रहे हैं, जैसे कि लो फाई वर्जन्स, अनप्लग्ड कवर्स, इंडी रिक्रिएशंस। हर जगह वही पुराने सुर एक नई आवाज में वापस आ रहे हैं। मतलब यार, एक ही गाना एक जनरेशन के लिए याद बन रही है और दूसरी जनरेशन के लिए डिस्कवरी। तो सच बताओ दोस्तों, इससे ज्यादा खूबसूरत ब्रिज क्या हो सकता है, जहां माँ का फेवरेट गाना बेटी के प्लेलिस्ट में मैच हो जाए। और म्यूजिक का तो यही चार्म होता है ना, कि टाइम भले ही चेंज हो पर मेलोडी अपनी जगह बना ही लेती है। तो चलिए आज एक इंटरेस्टिंग चैलेंज हो जाए। आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा आपका फेवरेट गाना था जो फिलहाल रीडिस्कवर होता है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI, और मैं बजाती हूँ अपना फेवरेट गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. ¡Cabana! ¡Burga, burga! ¡La vieja la burga! ¡Mirchi, burga!
2: हेलो
3: हेलो बेटा नवनीत,
2: आप कौन?
3: पापा कहाँ हैं?
2: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
3: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
2: लेकिन आपको काम क्या है?
3: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
2: पापा ने कहा था?
3: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मदर को।
2: क्या हुआ अंकल?
3: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
2: अब मुझे क्यों डांट?
3: चुप कर।
2: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
3: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा है तूने?
2: पापा को ऐसे किस बात का बुरा लगा? मुझे ये भी नहीं
3: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
2: लेकिन बुरी क्या लगी?
3: अंकल कल एक मारूंगा।
2: बदतमीजी क्या करी
3: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ू?
2: कह रहा हूँ मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
3: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
2: अंकल ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
3: ठीक है मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
2: क्या बोलू?
4: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
2: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
3: चुप कर। मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: Oh no!
12: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स। There's nothing like the magic of live theater.
13: Celebrate Prayog Theatre Group's 50th anniversary kickoff with two memorable stage productions, The Laugh Out Loud Comedy Last Over and the timeless classic Ala Afsar, Dharandhar famed Rakesh Bedi.
14: Join us on Friday, July 10th at 7 p.m. at Brook Arts Center, Bound Brook, New Jersey. Book your tickets now at prayogtheatre.com.
15: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
16: Tera kya hoga, Kalya?
17: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
16: Ab mirchi kha.
18: Radio Mirchi, it's hot.

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शाम द लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है धूम थ्री के मलंग गाने से। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर कैटरीना कैफ का एरियल एक्ट यानी जितने भी सर्कस स्टाइल परफॉर्मेंसेस थे, फ्लिप्स थे, बैलेंस थे, ग्रेस था, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन पर्दे के पीछे इस गाने के लिए ना एक फुल ऑन ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड था, क्योंकि कैटरीना ने इस गाने के लिए प्रोफेशनल एक्रोबैटिक ट्रेनिंग ली थी, बॉडी कंडीशनिंग की थी और मंथ्स तक रिहर्सल किए थे, क्योंकि ये कोई रेगुलर बॉलीवुड डांस नहीं था। इसमें स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और टाइमिंग सब कुछ एक साथ चाहिए था। और शूट के टाइम पर भी ना सेफ्टी और प्रिसीजन का पूरा ध्यान रखा गया था। तो सोचिए दोस्तों, जो परफॉर्मेंस हम बस 3 मिनट के लिए पर्दे पर देखते हैं, उसके पीछे महीनों की जिम और ट्रेनिंग छुपी होती है। तो इसका मतलब तो साफ है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सिर्फ डांस ही नहीं, फुल एथलीट बनना पड़ता है। और शायद इसीलिए कहते हैं बॉलीवुड का डांस नहीं है आसान। तो चलिए सुनते हैं धूम 3 का मलंग गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन से गाने के पर्दे के पीछे के किस्से आपको सुनने हैं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई।
1: हाँ हाँ सुना।
0: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब?
0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तो चले,
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: Visit Virani Jewelers on Oak Tree Road. 0% making charges on 22 carat and diamond jewelry and 100% value on your gold trade-in. Visit ViraniJewelers.com.
0: Celebrate freedom with Mirchi. July 4th Independence Day se August 15th Independence Day tak. Sirf freedom hi freedom.
3: Only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot. It's hot.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, the king of mortgage industry.
7: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
5: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
8: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
11: गुलाबी साड़ी अनि लाली लाल लाल, दिसते में भारी राजा फोटो मजा का।
12: टी सीरीज प्रेजेंट धमाल 4।
13: गुलाबी बिना चटनी कैसे बनी,
12: starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey, directed by Indra Kumar, releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
14: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
15: तेरा क्या होगा कालिया?
16: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
15: अब मिर्ची खा।
17: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज का हंगामा आ रहा है सीधा DDLJ से। जी हाँ, वही आइकॉनिक क्लाइमैक्स सीन जहां राज सिमरन के पीछे दौड़ रहे हैं, ट्रेन चल रही है, हाथ पकड़ने का मोमेंट और बैकग्राउंड में हिस्ट्री बन चुकी है। वैसे तो यार स्क्रीन पे लगता है कि सब परफेक्टली प्लान था, पर पर्दे के पीछे सीन थोड़ा रिस्की था। जी हाँ, ये सीन किसी ग्रीन स्क्रीन पर नहीं बल्कि एक रियल चलती ट्रेन पर शूट हुआ था और SRK एक्चुअली मूविंग ट्रेन के फुटबोर्ड पर लिटरली लटके हुए थे। कोई फैंसी सेफ्टी हार्नेस नहीं था, कोई CGI नहीं, सिर्फ बैलेंस, ट्रस्ट और आदित्य चोपड़ा का कॉन्फिडेंस। एक गलती और राज स्विट्जरलैंड नहीं, सीधा प्लेटफॉर्म पर होते। वैसे क्रू का पल्स थोड़ा हाई था लेकिन डायरेक्टर का फोकस टाइट था और कैमरा बोल रहा था कि ये शॉट मिलेगा ना तो पिक्चर हिट है बॉस। तो जी हाँ, आज भी एक टेक, एक मोमेंट और बॉलीवुड को मिल गया था वो आइकॉनिक शॉट जिसे आज तक का हमारा सबसे बड़ा रोमांटिक एंडिंग बोला जाता है। तो समझे दोस्तों, बॉलीवुड में रोमांस सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक से नहीं बट कभी कभी थोड़ी रियल रिस्क से भी बनता है और ऐसे ही पर्दे के पीछे की फिल्मी हंगामे चाहिए तो मुझे जरूर बताना। DM ऑन इंस्टाग्राम RJMirchi सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल आपके लिए DDLJ का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
6: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
5: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
7: Ise apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
5: Moral of the story? नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
5: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विद नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.